0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं फरहत नाज। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से कतर के अमीर शेख तमीम बिन हमद अल थानी ने टेलीफोन पर बातचीत की। कतर के रास लफान औद्योगिक क्षेत्र में हुई दुर्घटना में भारतीय नागरिकों की मृत्यु पर अमीर ने संवेदना व्यक्त की और घायलों के शीघ्र स्वस्थ होने की कामना की। प्रधानमंत्री मोदी ने घायलों को चिकित्सा सहायता उपलब्ध कराने के लिए कतर का आभार व्यक्त किया। दोनों नेताओं ने पश्चिम एशिया की स्थिति पर भी चर्चा की और क्षेत्र में शांति तथा स्थिरता के प्रयासों का समर्थन किया। भारत ने पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर के हालात पर पाकिस्तानी रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ की टिप्पणियों की कड़ी आलोचना की है। भारत ने कहा है कि ये टिप्पणियां पाकिस्तान की नाकामियों को छिपाने और मानवाधिकारों के उल्लंघन से ध्यान भटकाने की कोशिश है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने संवाददाताओं से कहा कि पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर में विरोध प्रदर्शन इसीलिए हो रहे हैं क्योंकि पाकिस्तान वहां के लोगों का दशकों से आर्थिक शोषण, बुनियादी अधिकारों का हनन और प्रशासनिक दमन कर रहा है। उन्होंने बताया कि पाकिस्तानी प्रशासन ने निहत्ते नागरिकों के साथ बर्बर व्यवहार किया है। जरूरी सामान और दवाओं की आपूर्ति रोक दी गई है और इंटरनेट बंद है। खाड़ी क्षेत्र में जारी टकराव पर श्री जायसवाल ने बताया कि भारतीय ध्वज वाले 10 जहाज अब भी फारस की खाड़ी में हैं। उन्होंने कहा कि 17 जून को अमरीका और ईरान के बीच सहमति पत्र पर हस्ताक्षर होने के बाद 11 जहाज होर्मुज जलडमरू मध्य से भारत पहुंचे। उन्होंने उम्मीद जताई कि भारतीय ध्वज वाले बाकी जहाज भी जल्द ही होर्मुज जलडमरू मध्य को पार कर सकेंगे। कृषि और किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि सरकार अलनीनो के कारण मानसून के संभावित दुष्प्रभाव से निपटने में किसानों की मदद के लिए अग्रिम तैयारियां कर रही हैं। नई दिल्ली में संवाददाताओं से बातचीत में श्री चौहान ने ये बात कही।
1: अलनीनो के कारण कमजोर मानसून रहने की जो संभावित स्थितियां हैं और जिसका प्रभाव अब दिखने भी लगा है, क्योंकि मानसून अभी काफी लेट चल रहा है, इसलिए ओवरऑल अभी तक 43% बरसात कम हुई है और आगे भी जो मौसम का अनुमान है कमजोर रहने की संभावना है। और इसका मतलब ये है कि हमारी खरीफ की फसल, उस पर इसका असर पड़ सकता है और इसलिए बिना किसी देरी के हम काफी दिनों से इन परिस्थितियों से निपटने के लिए तैयारियां कर रहे थे। 315 जिले ऐसे होंगे जहां वर्षा कम रहने की संभावना।
0: लखनऊ में हाल ही में हुई आग की घटना के बाद उत्तर प्रदेश सरकार ने राज्य भर में कोचिंग संस्थानों का सर्वे और अग्नि सुरक्षा ऑडिट शुरू किया है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने निर्देश दिए हैं कि सभी कोचिंग संस्थानों का सर्वे और अग्नि सुरक्षा ऑडिट जल्द से जल्द कराया जाए। उत्तर प्रदेश

0: सरकार आज बेंगलुरु में उत्तर प्रदेश ग्लोबल ग्रोथ डायलॉग 2026 के तहत निवेशक रोड शो का आयोजन करेगी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ इस कार्यक्रम की अध्यक्षता करेंगे। रोड शो में देश के प्रमुख उद्योगपति और निवेशक भाग लेंगे। कार्यक्रम में बुनियादी ढांचे, आईटी, ग्लोबल कैपेसिटी सेंटर और विदेशी निवेश से जुड़े विषयों पर चर्चा होगी। अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने कहा है कि जब तक ईरान समर्थित गुट आतंकी गतिविधियों में लिप्त है और हमले जारी रखे हुए हैं, तब तक पश्चिम एशिया में शांति और स्थिरता बहाल नहीं हो सकती। अबुधाबी में संवाददाताओं से बातचीत में उन्होंने कहा कि लेबनान में संघर्ष विराम को लेकर चर्चा ईरान के साथ चल रही वार्ता से अलग है। श्री रूबियो ने कहा कि उन्होंने अमरीका के उपराष्ट्रपति जेरी वेंस और लेबनान के राष्ट्रपति जोसेफ ओन से बात की है और अमरीकी अधिकारी लेबनान में पहल कर रहे हैं। श्री रूबियो ने कहा कि कोई भी कूटनीतिक सफलता इस बात पर निर्भर करेगी कि क्षेत्रीय सुरक्षा और ईरान समर्थित गुटों की गतिविधियों के मुद्दे पर कितनी प्रगति हो पाती है। पश्चिम एशिया में शांति बहाली को लेकर ईरान और अमरीका के बीच स्विट्जरलैंड में हाल ही में वार्ता हुई है। मौसम विभाग ने दिल्ली, हरियाणा, चंडीगढ़ और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में आज 60 से 70 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से तेज हवा चलने का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। अगले दो दिनों तक असम, मेघालय, आंतरिक कर्नाटक, मध्य महाराष्ट्र, ओडिशा, तेलंगाना, पश्चिम बंगाल के तराई वाले क्षेत्र और सिक्किम में तेज बारिश की संभावना व्यक्त की गई है। वहीं विभाग ने अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, आंध्र प्रदेश, बिहार, जम्मू कश्मीर, लद्दाख, झारखंड, केरलम, माहे, लक्षद्वीप, मध्य प्रदेश, कोंकण, गोवा, महाराष्ट्र, पंजाब और उत्तराखंड में भी तेज हवा के साथ आज बारिश की संभावना जताई है। फीफा विश्व कप में पुर्तगाल ने बड़ी जीत हासिल की है। अमेरिका के ह्यूस्टन में खेले गए ग्रुप के मुकाबले में पुर्तगाल ने उज्बेकिस्तान को 5-0 से हरा दिया। स्टार खिलाड़ी क्रिस्टियानो रोनाल्डो ने 2 गोल दागकर टीम की जीत में अहम भूमिका निभाई। उन्हें मैन ऑफ द मैच चुना गया। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: आकाशवाणी दिल्ली केन्द्ररु आकाशवाणी सम्बलपुर आरम्भ करुछु भक्ति संगीतर कार्यक्रम वन्दना। कार्यक्रमर प्रथम भक्ति अर्घ्यटि शुणन्तु। वीरवर सिंह नीनाङ्क रचनारु कण्ठ दैछन्ति मानस कुमार दत्त।

0: आकाशवाणी सम्बलपुर जुहार आंचलिक खबर पढ़ुछन सुप्रीति मिश्र। राज्य चलिथिबा स्वतंत्र सघन संशोधन एसआईआर 2026 के नेकरी मुख्य निर्वाचन अधिकारी आरएस गोपालन अध्यक्षताती स्वीकृतिप्राप्त राजनैतिक दलमानकर गुटे उच्चस्तरीय बैठक हो बैठक थी एसआईआर अग्रगति आउ डिजिटाइजेशन बाबते समीक्षा कर आईबा 5 तारीख चिठा भोटर तालिका बाहर जुलाई 5 नु अगस्ट 4 तारीख भितर आपत्ति अभियोग दाखल हो पार्बा झनेबिल योग्य भोटर तालिकानु बाद नाई पड़न बोली मुख्य निर्वाचन अधिकारी श्री गोपालन इथिलागि आएज आउ आयबाकाल राज्यर सबु विधानसभा मंडलीन बीएलओ आउ बुथ एजेंटमानकर समन्वय बैठक हेबा। केन्द्र सामाजिक न्याय आउ सशक्तिकरण राष्ट्रमंत्री रामदास अठावाले आएज ओडिशा गस्तथि आसुचन। इ अवसर श्री अठावाले वरिष्ठ अधिकारीमानकर सांगे विभागीय कार्यक्रम आउ योजना बाबते समीक्षा करबे। तारुत्र भुवनेश्वर राज्य अतिथि भवनन गुटे सांबादिक सम्मेलनीति बिल जोग देबे। ओडिशा पुलिस रो उपकूल सुरक्षा विभाग तरफ आज 14 नंबर मल्टी एजेंसी मेरिटाइम सिक्योरिटी ग्रुप रो बैठक भुवनेश्वर लोकसेवा भवन कन्वेंशन सेंटर ठाने हेबा। मुख्यमंत्री मोहन चरण माझी बैठक ती जोग देबार कार्यसूची रही। जातीय राज्यस्तरीय उपकूल आउ समुद्र सुरक्षा ढांचा के मजबूत करबार उपरे जोर देकरी ई उच्चस्तरीय बैठक आयोजित हेछे। उपमुख्यमंत्री कनकवर्धन सिंहदेव आउ पूर्त मंत्री पृथ्वीराज हरिचंदन अध्यक्षताती शक्ति और पूर्त विभाग मिलित बैठक गलाकाल हो रास्ता संप्रसारण प्रकल्प के तुर्ती करबार आउ यूटिलिटी स्थानांतर काम के एकासांगे करबार लगी दुई विभाग भितर आलोचना होइछे। धारी समय भितर काम शेष करबार के आंत विभागीय तालमेल उपरे उपमुख्यमंत्री श्री सिंहदेव जोर देइछन। सुरक्षा गुणवत्ता आउ वैधानिक मानके रक्षा करिकरी काम जल्दी शेष करबार के दुई विभाग प्रतिश्रुति देइछन। मुख्य शासन सचिव अनु गर्ग अध्यक्षताती भुवनेश्वर लोकसेवा भवन राज्यस्तरीय नार्को समन्वय केन्द्र 7 नंबर बैठक हो राज्य निशा कारबार रोकबार निशामुक्त समाज गठन और भिन्न भिन्न संस्था भितर समन्वय के बरकस करबार उपरे बैठक थी आलोचना हो बैठक नु मिलथिबा सूचना अनुसार 2024 नु 2026 भितर 513 मेट्रिक टन गंजेई जबत होइथिबार बेले 3238 मामला रुजु होइकरी 4534 जनकु गिरफ करा जाइछे। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी आबे 28 तारीख रविवार दिन सकाल 11 बजे आकाशवाणी मन की बात कार्यक्रम जरिए देश और दुनिया सारा लोकंकर संगे विचार विनिमय करबे। इटा तांकर 135 नंबर मन की बात कार्यक्रम हेबा। एथिलागि प्रधानमंत्री साधारण लोकंकर मतामत मागिछन। लुके नमो एप आर माई गव पोर्टल थी सेमानकर मतामत देइपारबे। इतार छड़ा 1800-1178-00 डायल करिकरी निजे निजर मतामत रेकर्ड करे पारबे। 1922 नंबर के मिस कॉल देकरी एसएमएस जरिए आइबा 26 तारीख तक निजर मतामत दे पारबे। विद्यालय गणशिक्षा विभाग तरफ शिक्षक योग्यता परीक्षा टीईटी पास करबार समय के 2-3 बछर तक बढ़ा जाइछे। इबाबदे विभाग तरफ प्राथमिक शिक्षा निर्देशकों को चिठी करा जाइछे। एबा 2028 मसिया अगस्ट 31 तारीख तक टीईटी पास करबार के निर्देश रहिछे। जेन शिक्षक माने पास नाइ करी सेमानको 3 बछर भितरे पास करबार के कुहा जाइछे। राज्य श्रम और संस्थान विभाग आउ शिशु अधिकार आयोगक मिलित सहयोगती शिशु आउ किशोर श्रमिक आईन बाबदे गुटे जिलास्तरीय कर्मशाला सम्बलपूर्ण हो जाए। कार्यक्रम थी ओएससीपीआरसीआर अध्यक्ष बबिता पात्र जिलापाल सिद्धेश्वर बलिराम बंदरकर सहित प्रशासनिक अधिकारी उपस्थित थे। राज्य सरकार शिशु श्रम मुक्त ओडिशा अभियान के सफल करबार के पहला शिशु श्रम मुक्त जिला बनाबार के अतिथि सुवर्णपुर जिला ना उद्यमी ओडिशा एमएसएमई कार्यक्रम अवसर जिला टाउन हॉल ठाने प्रदर्शनी आयोजन लगी जिलापाल डॉक्टर नृपराज साहू अध्यक्षता गोटे प्रस्तुति बैठक होबा 27-1 तारीख तक हेबार की थी प्रदर्शनी थी मोट 20 स्टल रहा आउ सकाल 10-6 बजे तक सर्वसाधारण लगी खुला रहा। भुवनेश्वर कलिंग स्टाडियम आस्थान 65 नंबर जातीय अंतराज्य सीनियर एथलेटिक चैंपियनशिप 2026 मूल होछि। एथलेटिक फेडरेशन ऑफ इंडिया और क्रीड़ा आउ युवसेवा विभाग तरफ हेबार की थी प्रतियोगिता आबा 28 तारीख तक चलवा। जापान हेबार की थी एशियन गेम्स 2026 लगी इटा गोटे जरूरी योग्यता पर्याय हेबा। 5 दिन धरिकी हेबार की थी प्रतियोगिता 27 राज्य और केन्द्रशासित अंचल पाखापाखि 630 जन खेलाली भाग नौछन। ପାଣିପାଗ ଦକ୍ଷିଣ ପଶ୍ଚିମ ମୌସୁମୀ ବାୟୁ ରାଜ୍ୟର ସବୁ ଇଲାକାକେ ଛୁଇଁଛେ ବୋଲି ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ ତରଫରୁ ସୂଚନା ମିଳିଛେ। ସମୁଦ୍ର ଖଣି ସହିତ ଦକ୍ଷିଣ ପଶ୍ଚିମ ଓ ଆଭ୍ୟନ୍ତରୀଣ ଓଡ଼ିଶାର ଜିଲ୍ଲାମାନଙ୍କେ ବର୍ଷା ବଢ଼ବା। ପାଣିପାଗ ବିଭାଗର ସୂଚନା ଅନୁସାରେ ଆଇବା ସାତ ଦିନ ତକ ରାଜ୍ୟର ପାଖାପାଖି ସବୁ ଇଲାକାନ ସାମାନ୍ୟ ମଧ୍ୟମ ଧରଣର ବର୍ଷା ହେବା। ଏଚ୍ଡି ଆଞ୍ଚଳିକ ଖବର ଇନ ଶେଷ ହେଲା। ଆରବଲର ଆଞ୍ଚଳିକ ଖବର ଶୁଣିପାରିବେ ରାତି 7:02। ଜୁହାର।
1: प्रसार भारती के पास है भारतीय संस्कृति की अनमोल धरोहर। इसमें शामिल हैं शास्त्रीय संगीत, नृत्य, साहित्य, नाट्य विधाएं, धारावाहिक, वृत्तचित्र और अन्य दुर्लभ रिकॉर्डिंग। और अब आप आकाशवाणी और दूरदर्शन के खजाने की डीवीडीज और सीडीज हासिल कर सकते हैं भारत में अपने संग्रह के लिए। प्रसार भारती के कार्यक्रमों का खजाना अगर है आपको पाना, तो लॉग ऑन कीजिए www.prasarbhartiarchives.co.in। याद रहे www.prasarbhartiarchives.co.in।

नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं मुनीश शर्मा। मुख्य समाचार। ब्रिक्स देशों ने आतंकवाद और साइबर खतरों समेत वैश्विक सुरक्षा की बढ़ती चुनौतियों से निपटने के लिए आपसी सहयोग को और मजबूत करने का आह्वान किया। कतर के अमीर ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को फोन पर रास लाफान गैस संयंत्र दुर्घटना में 12 भारतीयों की मृत्यु पर दुख व्यक्त किया। भारत ने पाक अधिकृत कश्मीर की स्थिति पर पाकिस्तान की टिप्पणी की कड़ी आलोचना की, कहा पाकिस्तान मानवाधिकारों के हनन से ध्यान भटकाने की कोशिश कर रहा है। भारत और अमेरिका के बीच प्रस्तावित द्विपक्षीय व्यापार समझौते की समीक्षा के लिए नई दिल्ली में उच्च स्तरीय बैठक, और फीफा विश्व कप में पुर्तगाल ने उज्बेकिस्तान को 5-0 से हराया। इंग्लैंड और घाना के बीच मैच बगैर किसी गोल के बराबरी पर छूटा। और अब समाचार विस्तार से। ब्रिक्स देशों के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकारों और वरिष्ठ सुरक्षा अधिकारियों की दिल्ली बैठक में आतंकवाद, साइबर खतरों और वैश्विक सुरक्षा चुनौतियों से निपटने के लिए सहयोग बढ़ाने पर बल दिया गया है। बैठक की अध्यक्षता राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजित डोभाल ने की।

0: बैठक में सदस्य देशों ने उभरती सुरक्षा चुनौतियों पर विचार विमर्श किया। विदेश मंत्रालय के अनुसार ऐसे सुरक्षा खतरों पर खास तौर से चर्चा हुई जो अब वैश्विक रूप ले चुके हैं। प्रतिनिधियों ने ऊर्जा, खाद्य सुरक्षा, जलवायु परिवर्तन और आतंकवादी संगठनों द्वारा नई तकनीक के दुरुपयोग पर भी चर्चा की। बैठक में आतंकवाद रोधी तथा सूचना और संचार तकनीक के उपयोग में सुरक्षा संबंधी कार्य समूहों के कार्यों और उनके परिणामों की भी समीक्षा की गई। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकारों ने हर तरह के आतंकवाद के खिलाफ साझा कार्रवाई की प्रतिबद्धता दोहराई। बैठक के बाद राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकारों ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से भी मुलाकात की। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल और रूस के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार सर्गेई शोइगु के बीच नई दिल्ली में ब्रिक्स देशों के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकारों की बैठक के क्रम में द्विपक्षीय वार्ता हुई है। इस वार्ता में दोनों पक्षों ने विभिन्न क्षेत्रों में आपसी सहयोग को मजबूत करने की प्रतिबद्धता दोहराई। श्री डोभाल ने सुरक्षा से जुड़े नए खतरों और चुनौतियों के प्रति जागरूक रहने की आवश्यकता पर बल दिया।
1: We need to be cognizant of the new security threats and challenges.
2: हमें सुरक्षा से जुड़े नए खतरों और चुनौतियों के प्रति जागरूक रहने की आवश्यकता है। गैर पारंपरिक खतरे राष्ट्रीय सीमाओं से आगे निकल चुके हैं और पारंपरिक जवाबी कार्रवाई से निपटने के लिए उन्होंने अपने बचाव के तरीके भी विकसित कर लिए हैं। नई और क्रांतिकारी तकनीकें, आतंकवाद के छिपे हुए रूप और तेजी से डिजिटल होती दुनिया में साइबर खतरे, ये सभी हमारे लिए एक बड़ा खतरा है।
1: They all constitute an important threats for us.
0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कतर के अमीर शेख तमीम बिन हमद अल थानी के साथ टेलीफोन पर बात की। कतर के अमीर ने रविवार को रास लाफान शहर में हुए हादसे में भारतीय नागरिकों की मृत्यु पर दुख जताया और घायलों के शीघ्र स्वस्थ होने की कामना की। प्रधानमंत्री मोदी ने पीड़ित परिवारों के प्रति सहानुभूति व्यक्त करने के लिए धन्यवाद दिया और घायलों को तुरंत चिकित्सकीय मदद पहुंचाने के लिए श्री थानी की सराहना की। प्रधानमंत्री मोदी ने पश्चिम एशिया में शांति के प्रयासों में कतर की भूमिका की भी सराहना की। उन्होंने आशा व्यक्त की कि इलाके में शांति और स्थिरता बहाल होगी। इस बीच विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कतर में हादसे पर बताया कि दुर्घटना में मृतकों के शव वापस लाने के प्रयास जारी हैं।
3: रास लाफान परियोजना में जब वहां एक विस्फोट हुआ, उस विस्फोट में 12 भारतीय नागरिक मारे गए हैं। इसके अलावा कुल 66 लोग ऐसे हैं जो घायल हुए हैं, वो लोग सब लोग सुरक्षित हैं और हॉस्पिटल में उनकी मेडिकल ट्रीटमेंट हो रही है। ये 12 लोग के बारे में हम लोग कतर में वहां के सरकार के साथ और इनके परिवारजनों के साथ उनसे बातचीत हो रही है हमारी।
0: भारत ने पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर के हालात पर पाकिस्तानी रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ की टिप्पणियों की कड़ी आलोचना की है। भारत ने कहा है कि ये टिप्पणियां पाकिस्तान की नाकामियों को छिपाने और मानवाधिकारों के उल्लंघन से ध्यान भटकाने की कोशिश है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने संवाददाताओं से कहा कि पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर में विरोध प्रदर्शन इसलिए हो रहे हैं कि पाकिस्तान वहां के लोगों का दशकों से आर्थिक शोषण, बुनियादी अधिकारों का हनन और प्रशासनिक दमन कर रहा है। उन्होंने बताया कि पाकिस्तानी प्रशासन ने निहत्थे नागरिकों के साथ बर्बर व्यवहार किया, जरूरी सामान और दवाओं की आपूर्ति रोक दी गई है और इंटरनेट बंद है। श्री जायसवाल ने बांग्लादेश में देवी देवताओं की मूर्तियों के अपमान की खबरों पर भी अपनी प्रतिक्रिया दी है।
3: हम लोगों ने देखा कि बांग्लादेश में से कुछ खबर आई कि वहां पर हिंदू भगवान के तस्वीरों के साथ अपवित्र हरकतें हुई, जिसके कारण वहां पर विरोध प्रदर्शन हुआ है। और हम लोग क्या ये उम्मीद है कि बांग्लादेश की सरकार जो वहां पर चरमपंथी लोग हैं उस पर अंकुश लगाएगी और जो वहां पर अल्पसंख्यक समुदाय के लोग रह रहे हैं उसकी सुरक्षा को गारंटी करेगी।
0: खाड़ी क्षेत्र में जारी टकराव पर श्री जायसवाल ने बताया कि भारतीय ध्वज वाले 10 जहाज अब भी फारस की खाड़ी में हैं। उन्होंने कहा कि 17 जून को अमेरिका और ईरान के बीच सहमति पत्र पर हस्ताक्षर होने के बाद 11 जहाज होर्मुज जलडमरू मध्य से भारत पहुंचे हैं।
3: 11 जहाज जो भारत की तरफ आ रहे हैं, इसमें से 3 भारतीय जहाज हैं जो कि क्रूड ऑयल टैंकर्स हैं। इनमें 285,000 मेट्रिक टन क्रूड ऑयल है। इसके अलावा एक विदेशी पताका के साथ एक एलपीजी टैंकर जो भारत की तरफ आ रहा है और एक विदेशी पताका के साथ फर्टिलाइजर कार्गो के साथ वो आ रहे हैं। और जो अन्य 10 हमारे जहाज हैं वो भी हमारी उम्मीद है कि जल्द ही वो हॉर्मुज पार करके भारत की तरफ आ जाएंगे।
0: अंतर्राष्ट्रीय समुद्री संगठन होर्मुज जलडमरू मध्य में फंसे

0: 11,000 से ज्यादा नागरिकों को निकालेगा। संगठन के महासचिव आर्सेनियो डोमिंग्वेज ने कहा कि इस अभियान में मदद के लिए जरूरी सुरक्षा की गारंटी ली गई है। इस अभियान में ईरान, ओमान और क्षेत्र के अन्य देशों और समुद्री उद्योग जगत का सहयोग लिया जाएगा। संयुक्त राष्ट्र के जिनेवा कार्यालय में ईरान के राजदूत अली बहरीनी ने कहा कि होर्मुज जलडमरू मध्य व्यावसायिक जहाजों के लिए बिना किसी टोल के पूरी तरह खुला है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। भारत और अमेरिका ने प्रस्तावित द्विपक्षीय व्यापार समझौते को आगे बढ़ाने के लिए उच्च स्तरीय वार्ता शुरू की है। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कल नई दिल्ली में अमेरिका के व्यापार प्रतिनिधि जैमिसन ग्रीर और भारत में अमेरिका के राजदूत सर्जियो गोर से मुलाकात की। ब्यौरा हमारी संवाददाता से।
1: दोनों पक्ष 24 जुलाई से पहले एक अंतरिम व्यापार समझौते को अंतिम रूप देने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि इसी तारीख को व्यापारिक साझेदारों से होने वाले आयात पर अमेरिका का अस्थायी 10% टैरिफ समाप्त होने वाला है। 20 फरवरी को अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट ने व्यापक टैरिफ को रद्द कर दिया था। इसके बाद अमेरिकी प्रशासन ने सभी देशों पर 24 फरवरी से 150 दिनों के लिए 10% का अस्थायी टैरिफ लगाया था। द्विपक्षीय व्यापार तनाव कम होने के बाद अमेरिका ने ज्यादातर भारतीय सामानों पर जवाबी टैरिफ को घटाकर 18% कर दिया और पहले से लगे 25% पेनल्टी टैरिफ को हटा दिया। भारत ने भी अमेरिका के कई औद्योगिक और कृषि उत्पादों पर टैरिफ कम करने या समाप्त करने का प्रस्ताव दिया था, जिनमें सूखे डिस्टिलर अनाज, पशुओं के चारे के लिए लाल ज्वार, ट्री नट्स, फल, सोयाबीन तेल, वाइन और स्पिरिट्स आदि शामिल हैं। रिशु की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से जया भारती।
0: वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने कहा है कि देश की अर्थव्यवस्था को मजबूत बनाने, विकास की गति को तेज करने और समावेशी विकास के लिए सभी पक्षों से और अधिक सहयोग आवश्यक है। उन्होंने ये बात कल नई दिल्ली में ग्लोबल कन्वर्जेंस फॉर ग्रोथ सम्मेलन को ऑनलाइन संबोधन में कही। एक रिपोर्ट।
2: वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने कहा कि मौजूदा दुनिया में समृद्धि और चुनौतियां तो साझा हैं, लेकिन संघर्षों और अनिश्चितता का असर विकासशील और पिछड़े देशों पर अधिक पड़ता है। उन्होंने कहा कि इन चुनौतियों से निपटने के लिए साझा वैश्विक कार्रवाई जरूरी है। श्रीमती सीतारामन ने कहा कि सभी देशों की घरेलू जरूरतें अलग अलग होती हैं और लगातार बने रहने वाले वैश्विक असंतुलन पर ध्यान दिया जाना चाहिए। वित्त मंत्री ने कहा कि भारत की विकास दर मुख्य रूप से घरेलू मांग के कारण है। उन्होंने कहा कि भारत दुनिया की सबसे तेज गति से बढ़ रही अर्थव्यवस्था है और मध्यम अवधि में इसके सकल घरेलू उत्पाद की विकास दर लगभग 7% रहने का अनुमान है। फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों की अध्यक्षता में आयोजित इस सम्मेलन में विकसित और उभरती अर्थव्यवस्था वाले देशों ने हिस्सा लिया। इनमें भारत, ब्राजील, चीन, केन्या, दक्षिण कोरिया जैसे G7 देशों और अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के प्रतिनिधि शामिल थे। सुपर्णा की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मैं मनोज।
0: कृषि और किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि सरकार अल नीनो के संभावित दुष्प्रभाव से निपटने के लिए खरीफ फसल के लिए एहतियाती तैयारियां कर रही है। श्री चौहान ने नई दिल्ली में कहा कि जुलाई में भी मॉनसून के कमजोर रहने की आशंका है।
3: ओवरऑल अभी तक 43% बरसात कम हुई है हमारी खरीफ की फसल, उस पर इसका असर पड़ सकता है। 315 जिले ऐसे होंगे जहां वर्षा कम रहने की संभावना है। इनमें से 111 जिले हमारी उच्च प्राथमिकता वाले जिले होंगे, क्योंकि इनमें सिंचाई 25% से कम है। मध्यम प्राथमिकता वाले, मतलब जहां 25-50% सिंचाई की व्यवस्थाएं हैं, ऐसे 76 जिले हैं। और 128 जिले निम्न प्राथमिकता वाले, इसलिए वहां सिंचाई के लिए डैम और बाकी चीजों की व्यवस्था है।
0: सरकार ने कहा है कि एथेनॉल मिश्रित पेट्रोल वैज्ञानिक रूप से प्रमाणित है और इसकी निरंतर निगरानी की जा रही है। निगरानी में तेल कंपनियां, वाहन निर्माता, ईंधन परीक्षण एजेंसियां और अन्य पक्ष शामिल हैं। सरकार ने यह स्पष्ट किया है कि सोशल मीडिया पर इस बारे में चल रही खबरें भ्रामक हैं, निराधार हैं। E20 पेट्रोल की शुरुआत के बाद से एथेनॉल मिश्रण के कारण इंजन की खराबी या वाहन में किसी तकनीकी खराबी की कोई व्यापक शिकायत सामने नहीं आई है। लखनऊ में कोचिंग सेंटर में आग लगने की घटना को देखते हुए उत्तर प्रदेश सरकार ने राज्य के कोचिंग संस्थानों के नियमन को मजबूत करने और

0: अवैध कोचिंग सेंटर्स के विरुद्ध अभियान की शुरुआत की है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि पूरे राज्य में आग से बचाव के उपायों की जांच मिशन मोड में की जाएगी। फीफा फुटबॉल विश्व कप में ग्रुप के में पुर्तगाल ने उज्बेकिस्तान को 5-0 से हरा दिया है। पुर्तगाल के क्रिस्टियानो रोनाल्डो ने 2 गोल दागे और इसके साथ ही रोनाल्डो 6 विश्व कप टूर्नामेंट में गोल करने वाले पहले खिलाड़ी बन गए हैं। उन्हें मैन ऑफ द मैच चुना गया। ग्रुप एल के एक अन्य मैच में कनाडा के टोरंटो में क्रोएशिया और पनामा के बीच मैच चल रहा है। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR पर भी उपलब्ध हैं। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं फरहत नाज।
1: धन्यवाद मनीष। देश की राजधानी से प्रकाशित हिंदी समाचार पत्रों के मुख्य पृष्ठों पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के हाथों से पद्म सम्मान ग्रहण करने वाली हस्तियों की तस्वीरें और होर्मुज को पार कर भारत की ओर आगे बढ़ रहे 11 ईंधन वाहक जहाजों की खबरें सबसे ऊपर छाई हैं। दैनिक भास्कर ने CUET परीक्षा परिणाम में सर्वाधिक अंक पाने वाली देवीना गहलोत का चित्र प्रकाशित करते हुए खबर को शीर्षक दिया है, 100 परसेंटाइल वाले 20% बढ़े, प्रीमियम संस्थानों में दाखिला कठिन होगा। नवभारत टाइम्स ने परीक्षा में सफल रहे कुछ छात्रों के चित्र के साथ इस समाचार को शीर्षक दिया है, दिल्ली विश्वविद्यालय के दाखिले में CUET के बाद भी 100% की रेस। देशबंधु ने मौसम के मिजाज को पहले पन्ने पर जगह दी है, खबर को शीर्षक दिया है, दिल्ली NCR में मौसम ने ली करवट और 12 दिन की देरी से मुंबई पहुंचा मानसून, जबकि दैनिक भास्कर का कहना है मानसून 3 दिन देरी से मुंबई पहुंचा। पत्र ने दिल्ली NCR में अभी हफ्ते भर और गर्मी और उमस बने रहने का अनुमान प्रकाशित किया है। जनसत्ता ने संकट के बीच शीर्षक से प्रकाशित संपादकीय में कहा है कि पश्चिम एशिया में हालात पूरी तरह सामान्य नहीं हो पाने की वजह से देश में बढ़ती महंगाई के बीच अब इसका असर औद्योगिक उत्पादन पर भी दिखने लगा है। पत्र की राय में मौजूदा संकट के लिए भले ही वैश्विक परिस्थितियां जिम्मेदार हो, लेकिन इसके समाधान के लिए कारगर कदम उठाने के बजाय इसका बोझ जनता पर डाल देने को उचित नहीं ठहराया जा सकता। वहीं राजस्थान पत्रिका ने कृषि क्षेत्र में भारत की उपलब्धि को प्रमुखता से प्रकाशित किया है, वैज्ञानिकों की 7 साल की मेहनत रंग लाई, सुपरफूड ग्रेन ओट्स में भारत बन रहा आत्मनिर्भर।
0: और अंत में लीजिए सुनिए इस बुलेटिन के मुख्य समाचार एक बार फिर। ब्रिक्स देशों ने आतंकवाद और साइबर खतरों समेत वैश्विक सुरक्षा की बढ़ती चुनौतियों से निपटने के लिए आपसी सहयोग को और मजबूत करने का आह्वान किया। कतर के अमीर ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को फोन पर रास लाफान गैस संयंत्र दुर्घटना में 12 भारतीयों की मृत्यु पर दुख व्यक्त किया। भारत ने पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर की स्थिति पर पाकिस्तान की टिप्पणी की कड़ी आलोचना की, कहा पाकिस्तान मानवाधिकारों के हनन से ध्यान भटकाने की कोशिश कर रहा है। और फीफा विश्व कप में पुर्तगाल ने उज्बेकिस्तान को 5-0 से हराया। और इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
2: आकाशवाणी प्रेजेंट्स मॉर्निंग न्यूज। गुड मॉर्निंग, आई एम अनुजा कुमार। द हेडलाइंस: BRICS nations call for stronger cooperation to address widening range of global security challenges, including terrorism and cyber threats. Prime Minister Narendra Modi gets condolence call from Qatar's Emir after 12 Indians killed in Ras Laffan gas plant blast. India strongly criticizes Pakistan's remarks over situation in POK, says Islamabad deflects attention away from its human rights abuses. India and United States open high-level trade talks in New Delhi to recalibrate proposed bilateral trade agreement. And in FIFA World Cup, Portugal thrash Uzbekistan 5-0. Match between England and Ghana draw goalless. And now the news in detail. National security advisers and senior security officials from the BRICS nations called for stronger cooperation to address a widening range of global security challenges, including terrorism and cyber threats, during a high-level meeting hosted by India in the national capital. The 16th BRICS National Security Advisers meeting, held under India's chairship of the grouping led by India's NSA, Ajit Doval, brought together

भूरी भूरी पानी भोजिले दीघीटा सीते ही उठे पाउली, भूरी भूरी पानी भिजिले दीघीटा सीते ही उठे पाउली। आरे मोर नव नवीना तोर बिना मते लागसी छीना, आरे

0: हेलो, आकाशवाणी संबलपुर। हेलो, अनुरोध कार्यक्रम।
1: हाँ नमस्कार मैडम।
0: नमस्कार, परिचय दिअंतु। आज्ञा,
1: भाई कहते विजयपुर ब्लॉक जालपाली बरगढ़ जिल्ला रो।
0: आज्ञा आज्ञा, आपन को अनेक अनेक शुभेच्छा और स्वागत आम कार्यक्रम को। आज प्रथम श्रोता आपण कहतु, आज कार्यक्रम रे क्यों गीत शुणे?
1: फिल्म अनुराग गीत बजारे
0: आज्ञा आज्ञा आज्ञा, आओ कहंतु गीतटी आपन को एते काही की भल लागे?
1: सेटा मते बहुत बढ़िया लागे। एटा हमर आगर गीत माने टी मते भल लागसी, पुरोनाटा माने सुनबा लागि।
0: आज्ञा आज्ञा आज्ञा,
1: और हमर गीतटा जन बजेर गोड़े बढ़िया लागसी।
0: आज्ञा, आओ कहंतु हमर आओ केउ केउ कार्यक्रम आपन सुनु चंते?
1: हां सब कार्यक्रम तो भल लागजे, और मै विशेष करी धन्यवाद देमे हमर आकाशवाणी सम्बलपुर समस्त कर्ता शीतल षष्ठी लाइव प्रोग्राम जेन कहते से बहुत बढ़िया है। निरवच्छिन्न भाव में पूरा मूल श्रेष्ठ भल कर सुनाईला से मुझे और थे धन्यवाद दूसरी आम टेक्निकल टीम को।
0: आज्ञा आज्ञा आज्ञा, आपण मानकर पसंद लगी आम पश्चिम ओडिशार एत बड़ गणपर्व निश्चित भाव तार आम धारा बरणी सीधा सड़क शुणु श्रोता मान को बहुत भल लगी। आम परिश्रम सार्थक होतीपाई आमे मध्य खुशी अच्छु। आपणकर मन पसंद रीतटी शुणी नियंतु, क्या समर्पित करेंगे कहतु? आज्ञा
1: धन्यवाद। पटेल मनोज पटेल अच्छी लोकनाथ साहू लोकनाथ प्रधान जशवंत
0: जहाँ
1: सम्बलपुर समस्त कर्मकर्ता समस्त श्रोता मान को डेडिकेट है।
0: आज्ञा आज्ञा आज्ञा, आपण जहाँ जहाँ ना उल्लेख कले जहाँ जहाँ को आपण वर्तमान स्मरण कले समस्त सहित आपण आपणकर मनपसंद गीतटे शुणि नियंतु। आम कार्यक्रम को फोन करितबारो आपण को धन्यवाद।
1: नमस्कार
0: नमस्कार।

0: हेलो आकाशवाणी संबलपुर, हेलो अनुरोध कार्यक्रम।
1: हेलो नानी, जोहार।
0: जोहार, नमस्कार मैडम, प्रथमे परिचय दियंतु आपनकर।
1: मई कुमारी दीक्षा गोपाल, हमर गांव सीनापड़ा, पोस्ट होचे परला, थाना धर्मगढ़, जिला कलाहांडी नु कहू छ नानी।
0: आपन को हम कार्यक्रम को स्वागत, आपन हमरो आजिरो द्वितीय श्रोता कोहंतो, आज हम कार्यक्रम रे क्यों गीत सुनिबे?
1: मई तो मो आखिर तारार टाइटल सॉन्ग सुनमी नानी।
0: अच्छा, ये गीत अपन को काही की भल लागे?
1: हता ये सुनबा के टिके भल लागसी, तो सि लागि गीत माने जेंता की गोटे मनोरंजन हेले, मन के टिके खुशी भी लागसी। केन लोकन कथा गोटे भाबु थिले भी से कथा ता पूरा भाबी भी नहीं हो पारे, जदि कांदु थिले मध्य कांदबा ता भी बंधी जासी, हेति लागि मई गीत सुनबा के मके भल लागसी, गायबा के भी भल लागसी।
0: संगीत मन को खुशी दिए, चिंता अवसाद दूर करे, यहाँ कहवाक चाहती तो
1: हाँ नानी।
0: अच्छा, आपण पानी पाव केमती अच्छे, वर्षा हैला?
1: हाँ नानी, वर्षा हैला, गोला तीन दिन हैला ना वर्षा हैला ता, आरु आज भी सकाले टिके वर्षा इता भूरी पाक टिके हैला, रेबे बादलिया पाक रही करी, एबे पवन टिके टिके आसुचे नानी।
0: जा हो, वर्षा ही कि समस्त को टिके शांति प्रदान कला, शीतलता प्रदान कला, नहले ग्रीष्म रे खूब त्राही त्राही करूथिले साधारण मनीष।
1: हाँ नानी,
0: आउ कोन तो हमर आउ केम केम कार्यक्रम आपण सुनते?
1: मुई तो जुबवाणी कार्यक्रम सुनसी, तार परे घर संसार कार्यक्रम सुनसी, चाषबास कार्यक्रम सुनसी, आरु समलपुरी गीत माने दिया हेसी ए कार्यक्रम सुनसी, तार परे फोन इन प्रोग्राम हेसी, हेलो इता बुधवार दिन जेन अमर ओडिया चलचित्र गीत क नै करियो त हेलो पसंद दिया हेसी एटा सुनसी, आ शनिवार रविवार दिन हिंदी चलचित्र रा भी सुनसी नानी, में सब कार्यक्रम।

0: हेलो, आकाशवाणी संबलपुर। हेलो अनुरोध कार्यक्रम।
1: हाँ मैडम नमस्कार।
0: नमस्कार आज्ञा, कहंतु आपणकर परिचय प्रथमे दियंतु, केउठु कहउछंती कहंतु।
1: मु डोमाल उदिन नारपुर कलाहांडी रु मनोज कुमार पटेल कहउछि।
0: मनोज आज्ञा, आपणकु आम कार्यक्रम को स्वागत। प्रथमे कहंतु आज कार्यक्रम रे केउ गीत शुणिबे?
1: आज्ञा बाजीरो आखि जे तोर सामुका से कि सुनि देबे। आज्ञा
0: आज्ञा आज्ञा आज्ञा, गीत पसंद लागु।
1: आज्ञा
0: आज्ञा
1: आपण केंता अछन?
0: हाँ मु ठीक अच्छे, आमर आकाशवाणी संबलपुर केन्द्र समस्ते ठीक अच्छे। आज्ञा धन्यवाद पचरावार लगी। आपन को हुने आज्ञा केंता अच्छे?
1: आपन ठीक थेले तो आज्ञा आमे ठीक थे मा।
0: निश्चय निश्चय आज्ञा, आपन माने आमर केन्द्र कार्यक्रम सुनून, आपन कर भल पाइबा दोन, आमे निश्चय सबुदिन आपन मान कर लगी कार्यक्रम नहीं कर आसमु। आमर केन्द्र नु आपन कार्यक्रम सुनी पारबे। आउ आज्ञा आपणकर एल्डे वर्षा बुर्सी केंता हिचे?
1: हां पर दिन वर्षा हेथिला आज्ञा, भल वर्षा ते हेथिला आमर साइड।
0: आज्ञा
1: आउ जादे पानी परिवार चली से आज्ञा, आमर भेणी रो गार टाणु छबे।
0: आज्ञा आज्ञा आज्ञा,
1: आउ मासे डेढ़ मास भितरे बाहरी जीवा। आज्ञा
0: आज्ञा आज्ञा, आपण चास करी साइला परे केनु एटा बिक्री लागि आपण बाजार केनु खोजसन?
1: ଆଜ୍ଞା ଆମର ଭବାନୀପାଟଣା ଡେଲି ମାର୍କେଟ ଯାଇସି। ଆଜ୍ଞା ଆମର ପାଖେନ ପଡ଼ୁଛେ ଭବାନୀପାଟଣାରୁ 10 କିଲୋମିଟର ଆମର ଗାଁ। ଆଜ୍ଞା
0: ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା, ଖାଲି ପନିପରିବା ଚାଷ କରସନ୍?

0: हेलो, आकाशवाणी संबलपुर। हेलो अनुरोध कार्यक्रमो।
1: हेलो अनुराध।
0: नमस्कार, किए कहुचंती, परिचय दियंतु।
1: हेलो मैम, नमस्कार। गुड मॉर्निंग मैम, शुभ सकाळ मैम। दिस इज मामा
0: ओके, भुवनेश्वर रहंती। आज
1: मिशन,
0: कार्यक्रम,
1: आई
0: हाँ, आम कार्यक्रम को फोन करिथिबारु आपनको अनेक अनेक शुभेच्छा एवं स्वागत। कहुंतु
1: एम फ्रॉम
0: कार्यक्रम रे
1: भुवनेश्वर।
0: आज क्यों गीत शुणिबे?
1: हाँ मैम, आपण सहित प्रथम थर कथा होची। आपण मते सामिल करथिबारु आपणको बहुत बहुत वेलकम। एंड गोटे छोट लाइन ते कहिबी,

0: এইটি শেষ হেলা অনুরোধের ওড়িয়া কথাচিত্র গীতর লাইভ ফোন ইন কার্যক্রম হ্যালো অনুরোধ আজ কার্যক্রম উপস্থাপন কলি মু সঙ্গীতা সাহু বৈষয়িক সহযোগিতা কলে জ্যোতিপ্রকাশ মিশ্র এবং প্রকাশ ছত্রিয়া আপনার নিজ মনপছন্দর ওড়িয়া কথাচিত্রর গীত শুণবা আম কার্যক্রমক প্রতি বুধবার সকাল 9টা-10টা মধ্যে ফোন করতু 0663241231 ও 0663241240 যোগে আকাশবাণী সম্বলপুর বর্তমান সময় পূর্বাহ্ন 10টা হওয়া যাচ্ছে শুণন্তু হিন্দি সম্বাদ রিলে করে প্রচার করছু আকাশবাণী দিল্লি কেন্দ্রর
1: आकाशवाणी समाचार के साथ मैं फरहत नाज। ब्रिक्स देशों के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकारों और वरिष्ठ सुरक्षा अधिकारियों की दिल्ली बैठक में आतंकवाद, साइबर खतरों और वैश्विक सुरक्षा चुनौतियों से निपटने के लिए सहयोग बढ़ाने पर बल दिया गया। बैठक की अध्यक्षता राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल ने की। बैठक में सदस्य देशों ने उभरती सुरक्षा चुनौतियों पर विचार विमर्श किया। विदेश मंत्रालय के अनुसार ऐसे सुरक्षा खतरों पर खास तौर से चर्चा हुई जो अब वैश्विक रूप ले चुके हैं। प्रतिनिधियों ने ऊर्जा, खाद्य सुरक्षा, जलवायु परिवर्तन और आतंकवादी संगठनों द्वारा नई तकनीक के दुरुपयोग पर चर्चा की। बैठक में आतंकवाद रोधी तथा सूचना और संचार तकनीक के उपयोग में सुरक्षा संबंधी कार्य समूहों के कार्यों और उसके परिणाम की समीक्षा की गई। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकारों ने हर तरह के आतंकवाद के खिलाफ साझा कार्रवाई की प्रतिबद्धता भी दोहराई। बैठक के बाद राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकारों ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की। भारत ने पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर के हालात पर पाकिस्तानी रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ की टिप्पणियों की कड़ी आलोचना की है। भारत ने कहा है कि ये टिप्पणियां पाकिस्तान की नाकामियों को छिपाने और मानवाधिकारों के उल्लंघन से ध्यान भटकाने की कोशिश है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने संवाददाताओं से कहा कि पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर में विरोध प्रदर्शन इसीलिए हो रहे हैं क्योंकि पाकिस्तान वहां के लोगों का दशकों से आर्थिक शोषण, बुनियादी अधिकारों का हनन और प्रशासनिक दमन कर रहा है। उन्होंने बताया कि पाकिस्तानी प्रशासन ने निहत्ते नागरिकों के साथ बर्बर व्यवहार किया है। जरूरी सामान और दवाओं की आपूर्ति रोक दी गई है और इंटरनेट भी बंद है। खाड़ी क्षेत्र में जारी टकराव पर श्री जायसवाल ने बताया कि भारतीय ध्वज वाले 10 जहाज अब भी फारस की खाड़ी में हैं। उन्होंने कहा कि 17 जून को अमेरिका और ईरान के बीच सहमति पत्र पर हस्ताक्षर होने के बाद 11 जहाज होर्मुज जलडमरू मध्य से भारत पहुंचे हैं।
2: 11 जहाज जो भारत की तरफ आ रहे हैं, इसमें से 3 भारतीय जहाज हैं जो कि क्रूड ऑयल टैंकर्स हैं। इनमें 285,000 मेट्रिक टन क्रूड ऑयल है। इसके अलावा एक विदेशी पताका के साथ एक एलपीजी टैंकर जो भारत की तरफ आ रहा है और एक विदेशी पताका के साथ फर्टिलाइजर कार्गो के साथ वो आ रहे हैं। और जो अन्य 10 हमारे जहाज हैं वो भी हमारी उम्मीद है कि जल्द ही वो हॉर्मुज पार करके भारत की तरफ आ जाएंगे।
1: अंतर्राष्ट्रीय समुद्री संगठन होर्मुज जल डमरू मध्य में फंसे 11,000 से ज्यादा नाविकों को निकालेगा। संगठन के महासचिव आर्सेनियो डोमिनिवेज ने कहा कि इस अभियान में मदद के लिए जरूरी सुरक्षा गारंटी ली गई है। इस अभियान में ईरान, ओमान और क्षेत्र के अन्य देशों और समुद्री उद्योग जगत का सहयोग लिया जाएगा। संयुक्त राष्ट्र के जिनेवा कार्यालय में ईरान के राजदूत अली बहरीनी ने कहा कि होर्मुज जल डमरू मध्य व्यावसायिक जहाजों के लिए बिना किसी टोल के पूरी तरह खुला है। भारत और अमेरिका ने प्रस्तावित द्विपक्षीय व्यापार समझौते को आगे बढ़ाने के लिए उच्च स्तरीय वार्ता शुरू की है। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कल नई दिल्ली में अमेरिका के व्यापार प्रतिनिधि जेमिसन ग्रीर और भारत में अमेरिका के राजदूत सर्जियो गोर से मुलाकात की। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने कहा है कि देश की अर्थव्यवस्था को मजबूत बनाने, विकास की गति को तेज करने और समावेशी विकास के लिए सभी पक्षों से और अधिक सहयोग आवश्यक है। उन्होंने ये बात कल नई दिल्ली में ग्लोबल कन्वर्जेंस फॉर ग्रोथ सम्मेलन को ऑनलाइन संबोधन में कही। सरकार ने कहा है कि एथेनॉल मिश्रित पेट्रोल

वैज्ञानिक रूप से प्रमाणित है और इसकी निरंतर निगरानी की जा रही है। निगरानी में तेल कंपनियां, वाहन निर्माता, ईंधन परीक्षण एजेंसियां और अन्य पक्ष शामिल हैं। सरकार ने स्पष्ट किया है कि सोशल मीडिया पर इस संबंध में चल रही खबरें भ्रामक और निराधार हैं। E20 पेट्रोल की शुरुआत के बाद से इथेनॉल मिश्रण के कारण इंजन की खराबी या वाहन में तकनीकी खराबी की कोई व्यापक शिकायत सामने नहीं आई है। तमिलनाडु सरकार ने वेतरी तमिलगम दस्तावेज को मंजूरी दे दी है। इसमें मामा की ओर से सोने की अंगूठी देने की बात कही गई है। योजना के अंतर्गत सरकारी अस्पतालों में बच्चे का जन्म होने पर राज्य के स्थायी निवासियों के नवजात शिशुओं को 1 ग्राम सोने की अंगूठी दी जाएगी। राज्य सरकार ने इस संबंध में आदेश जारी कर दिए हैं। गृहमंत्री अमित शाह ने आज रानी दुर्गावती को श्रद्धांजलि अर्पित की है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री शाह ने कहा कि रानी दुर्गावती एक वीर रानी और नारी शक्ति का प्रतीक थी। श्री शाह ने कहा कि रानी दुर्गावती सुशासन और सेवा के लिए शाश्वत प्रेरणा बनी रहेंगी। फीफा फुटबॉल विश्व कप में ग्रुप के में पुर्तगाल ने उज्बेकिस्तान को 5-0 से हरा दिया है। पुर्तगाल के क्रिस्टियानो रोनाल्डो ने 2 गोल दागे। इसके साथ ही रोनाल्डो 6 विश्व कप टूर्नामेंट में गोल करने वाले पहले खिलाड़ी बन गए हैं। उन्हें मैन ऑफ द मैच चुना गया। इसके साथ ही समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

हिन्दीथी सम्वाद सुन्ले आकाशवाणी दिल्ली केन्द्र नो आकाशवाणी सम्बलपुर कार्यक्रम प्रसारित हेउछे मीडियम वेभथि 317.5 मिटर संगे 945 किलो हजार एफएम 101 मेगा हजथि और न्यूज अन एआईआर मोबाइल एप जरिए श्रोता बंधु समिया सखालर 10:05 प्रचार करुछु ओडिया सिनेमा गीतर कार्यक्रम कार्यक्रमर पहला गीत सुनुन अलिबा दागनु कंठ दे एचपी गीता और संगीता महापात्रा

0: ଇନସେସ୍ ହେଲା ଗୋଟେ ହିନ୍ଦୀ ସିନେମା ଗୀତର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ। ଆଜି ଏଥିରେ ଶୁଣିଲେ କକ୍ଟେଲ୍ ସିନେମାର କେତେଟା ଗୀତ। ଗୀତମାନଙ୍କୁ ଲେଖିଥିଲେ ଇର୍ଷାଦ କାମିଲ, ଆର୍ ସଙ୍ଗୀତ ସଜେଇଥିଲେ ପ୍ରୀତମ। ଶ୍ରୋତାମାନେ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଶୁଣୁଛନ୍ ଆକାଶବାଣୀ ସମ୍ବଲପୁର କେନ୍ଦ୍ରନୁ। ଇହାଦେ ସମୟ ଦିନର 11 ବାଜବାରକେ ଯାଉଛେ। ହିନ୍ଦୀ ଥି ସମ୍ବାଦ ଶୁଣୁନ୍, ରିଲେ କରୁଛୁ ଆକାଶବାଣୀ ଦିଲ୍ଲୀ କେନ୍ଦ୍ରନୁ।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं कनकलता। ब्रिक्स देशों के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकारों और वरिष्ठ सुरक्षा अधिकारियों की दिल्ली बैठक में आतंकवाद, साइबर खतरों और वैश्विक सुरक्षा चुनौतियों से निपटने के लिए सहयोग बढ़ाने पर बल दिया गया है। बैठक की अध्यक्षता राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजित डोभाल ने की। बैठक में सदस्य देशों ने उभरती सुरक्षा चुनौतियों पर विचार विमर्श किया। विदेश मंत्रालय के अनुसार ऐसे सुरक्षा खतरों पर खासतौर से चर्चा हुई जो वैश्विक रूप ले चुके हैं। प्रतिनिधियों ने ऊर्जा, खाद्य सुरक्षा, जलवायु परिवर्तन और आतंकवादी संगठनों द्वारा नई तकनीक के दुरुपयोग पर चर्चा की। बैठक में आतंकवाद रोधी तथा सूचना और संचार तकनीक के उपयोग में सुरक्षा संबंधी कार्य समूहों के कार्यों और उसके परिणाम की समीक्षा की गई। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकारों ने हर तरह के आतंकवाद के खिलाफ साझा कार्रवाई की

0: प्रतिबद्धता भी दोहराई। बैठक के बाद राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकारों ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से भी मुलाकात की। भारत ने पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर के हालात पर पाकिस्तानी रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ की टिप्पणियों की कड़ी आलोचना की है। भारत ने कहा है कि टिप्पणियां पाकिस्तान के नाकामियों को छिपाने और मानवाधिकारों के उल्लंघन से ध्यान भटकाने की कोशिश है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने संवाददाताओं से कहा कि पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर में विरोध प्रदर्शन इसलिए हो रहे हैं कि पाकिस्तान वहां के लोगों का दशकों से आर्थिक शोषण, बुनियादी अधिकारों का हनन और प्रशासनिक दमन कर रहा है। उन्होंने बताया कि पाकिस्तानी प्रशासन ने निहत्थे नागरिकों के साथ बर्बर व्यवहार किया है, जरूरी सामान और दवाओं की आपूर्ति रोक दी गई है और इंटरनेट बंद है।
1: हम लोगों ने देखा कि बांग्लादेश में से कुछ खबर आई कि वहां पर हिंदू भगवान के तस्वीरों के साथ अपवित्र हरकतें हुई, जिसके कारण वहां पर विरोध प्रदर्शन हुआ है। और हम लोग क्या ये उम्मीद है कि बांग्लादेश की सरकार जो वहां पर चरमपंथी लोग हैं उस पर अंकुश लगाएगी और जो वहां पर अल्पसंख्यक समुदाय के लोग रह रहे हैं उसकी सुरक्षा को गारंटी करेगी।
0: खाड़ी क्षेत्र में जारी टकराव पर श्री जायसवाल ने बताया कि भारतीय ध्वज वाले 10 जहाज अब भी फारस की खाड़ी में हैं। उन्होंने कहा कि 17 जून को अमेरिका और ईरान के बीच सहमति पत्र पर हस्ताक्षर होने के बाद 11 जहाज होर्मुज जलडमरू मध्य से भारत पहुंचे हैं।
1: 11 जहाज जो भारत की तरफ आ रहे हैं, इसमें से 3 भारतीय जहाज हैं जो कि क्रूड ऑयल टैंकर्स हैं। इनमें 285,000 मेट्रिक टन क्रूड ऑयल है। इसके अलावा एक विदेशी पताका के साथ एक एलपीजी टैंकर जो भारत की तरफ आ रहा है और एक विदेशी पताका के साथ फर्टिलाइजर कार्गो के साथ वो आ रहे हैं। और जो अन्य 10 हमारे जहाज हैं वो भी हमारी उम्मीद है कि जल्द ही वो हॉर्मुज पार करके भारत की तरफ आ जाएंगे।
0: अंतर्राष्ट्रीय समुद्री संगठन हॉर्मुज जलडमरू मध्य से में फंसे 11,000 से ज्यादा नाविकों को वहां से निकालेगा। संगठन के महासचिव आर्सेनियो डोमिंगवेज ने कहा कि इस अभियान में मदद के लिए जरूरी सुरक्षा गारंटी ली गई है। इस अभियान में ईरान, ओमान और क्षेत्र के अन्य देशों तथा समुद्री उद्योग जगत का सहयोग लिया जाएगा। संयुक्त राष्ट्र के जिनेवा कार्यालय में ईरान के राजदूत अली बहरीनी ने कहा कि होर्मुज जलडमरू मध्य व्यावसायिक जहाजों के लिए बिना किसी टोल के पूरी तरह खुला है। भारत और अमेरिका ने प्रस्तावित द्विपक्षीय व्यापार समझौते को आगे बढ़ाने के लिए उच्चस्तरीय वार्ता शुरू की है। वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कल नई दिल्ली में अमेरिका के व्यापार प्रतिनिधि जेमिसन ग्रीर और भारत में अमेरिका के राजदूत सर्जियो गोर से मुलाकात की। विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर ने कहा है कि पासपोर्ट सेवा कार्यक्रम के दूसरे चरण का क्रियान्वयन, चिप आधारित ई पासपोर्ट की शुरुआत, नए पासपोर्ट सुरक्षा केंद्रों और पोस्ट ऑफिस पासपोर्ट सेवा केंद्र की स्थापना तथा रिकॉर्ड स्तर पर पासपोर्ट जारी करने से यात्रा सुगम हो रही है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री जयशंकर ने 14वें पासपोर्ट सेवा दिवस के अवसर पर भारत और विदेश में सभी पासपोर्ट प्राधिकरणों को शुभकामनाएं दी। फीफा फुटबॉल विश्व कप में ग्रुप के में पुर्तगाल ने उज्बेकिस्तान को 5-0 से हरा दिया है। पुर्तगाल के क्रिस्टियानो रोनाल्डो ने 2 गोल किए। इसके साथ ही रोनाल्डो 6 विश्व कप टूर्नामेंट में गोल करने वाले पहले खिलाड़ी बन गए हैं। उन्हें मैन ऑफ द मैच चुना गया। ग्रुप एल के एक अन्य मैच में कनाडा के टोरंटो में क्रोएशिया और पनामा के बीच मैच चल रहा है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: आकाशवाणी संबलपुर आरंभ करुछु संबलपुरी गीतर कार्यक्रम। कार्यक्रमर पहला गीत जहाँके गाइछन जयलाल बुडेक आउ लेखिछन अरक्षित धरुआ।

0: सीआईईटी प्रस्तुत करता है
1: उमंग उमंग उमंग उमंग।
0: आप सभी श्रोताओं को आपके साथी अजीत का नमस्कार, जय जोहार, जय हिंद। श्रोताओं आइए सबसे पहले सुनते हैं आज का सुविचार जो हमें भेजा है जितेंद्र दास मानिकपुरी, मिलव दास, जयदास, देवेश दास, धनवंतीन बाई और मोतीम बाई मानिकपुरी जी ने। लिखते हैं, शांत रहना कमजोरी नहीं, ये समझदारी की निशानी है, क्योंकि हर जवाब शब्दों से ही नहीं लेकिन व्यवहार से भी दिया जाता है। इतने सुंदर विचार के लिए आप सबको उमंग कार्यक्रम की ओर से हमारा आभार। और आइए सुनते हैं संदेश भेजने वाले श्रोताओं के नाम। तो पहला संदेश हमें मिला है मगरपारा बिलासपुर से वसीम जाटव, अकरम जाटव, आफताब जाटव, महताब जाटव, मिराज जाटव और अल्ताफ जाटव। भटीपुरा महोबा उत्तर प्रदेश से कृष्ण कुमार गुप्ता, कमला देवी गुप्ता, पंकज, आयुषी और मीहू। जेल रोड कानपुर से सरफुद्दीन फातिमा थापा, वसीम अकरम बेलदार और डब्ल्यू सोनम कुटरिया। भदोही उत्तर प्रदेश से राजेश कुमार विद्यार्थी और उनकी छोटी बहन कोमल। तो श्रोताओं आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद संदेश भेजने के लिए। जैसा कि हम हर बार कहते हैं इस बार भी कहेंगे कि जुड़े रहिए आपके प्रिय कार्यक्रम उमंग से। और आइए अब चलते हैं आज की श्रृंखला ये भी जानिए कि अगली कड़ी में। श्रोताओं जहां तक गुफाओं की बात है, लगभग सभी अजंता और एलोरा की गुफाओं से परिचित हैं, लेकिन उमंग कार्यक्रम में हमारा उद्देश्य है उन जानकारियों को उपलब्ध कराना जो लोक संज्ञान में कम है लेकिन पुरातत्व और इतिहास की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। जी तो श्रोताओं कल हमने बात की थी भीम बैठका की गुफाओं के बारे में, आज हम बात करेंगे कुटुम्बसर की गुफाओं के बारे में। कुटुम्बसर की गुफाओं को भारत की सबसे लंबी प्राकृतिक गुफाओं में गिना जाता है। तो आइए जानते हैं कि ये गुफाएं कहां स्थित हैं। श्रोताओं ये गुफाएं स्थित हैं छत्तीसगढ़ राज्य के

0: वे अद्भुताकार के थे, जैसे किसी ने उन्हें तराश कर बनाया हो। तो आइए जानते हैं कि उन पत्थरों को तराशने वाला कौन था। श्रोताओं, यही तो खास और बड़ी अनोखी बात है कुटुम्बसर की गुफाओं के बारे में। जब विशेषज्ञ यहाँ पर आए तो उन्होंने पता लगाया कि चट्टानों को तराशने वाली प्रकृति ही थी। यहाँ पानी हमेशा टपकता रहता है। पानी के लाखों वर्षों से टपकते रहने के कारण इन चट्टानों को आकार मिला। यहाँ की चट्टानें चूना पत्थर से बनी है। श्रोताओं, इन गुफाओं में कुछ आकृतियां तो ऐसी हैं जो किसी पशु, मुख्य रूप से हाथी, बाघ, विशाल मानव आकृति और शिवलिंग की तरह भी दिखाई देती हैं। जरा सोचिए श्रोताओं, कैसे इन आकृतियों को प्रकृति ने लाखों वर्षों से पानी की बूंदें टपकाकर बनाया। अद्भुत है ना जी। किसी ने लिखा है कि यदि प्रकृति को शिल्पकार के रूप में देखना है तो कुटुम्बसर की गुफाओं में जरूर जाइए। इन गुफाओं के ऊपर भूमि में कई भूमिगत जल के झरने हैं, जहां से निरंतर पानी की बूंदें गिरती रहती हैं। वैज्ञानिकों ने इन गुफाओं में अनेक दुर्लभ जीवों के जीवाश्म भी ढूंढ रहे हैं। एक बात और आपको बता दें श्रोताओं कि इन गुफाओं के अंदर हमेशा घुप अंधेरा रहता है। वहां जाने के लिए पर्यटक गाइड्स और शक्तिशाली बैटरियों वाले लैंप्स लेकर ही जाते हैं। अंदर पानी बहता रहता है, लेकिन एक बड़ी रोचक बात है इन गुफाओं की। आपको बताएं क्या है वो? वो ये कि यहाँ के पानी में जो मछलियां पाई जाती हैं वे अंधी होती हैं, देख नहीं पाती। यहाँ के अन्य जलज प्राणी भी देख नहीं सकते। लेकिन एक सवाल है श्रोताओं कि भला ऐसा क्यों है? ना ये बड़ी अजीब बात। जी हाँ श्रोताओं, वैज्ञानिकों के अनुसार यहाँ हमेशा अंधकार रहता है। इससे संभवतः मछलियों और जलज जीवों की आंखें तो हैं, लेकिन उनमें देखने की क्षमता का विकास नहीं हुआ, या फिर धीरे धीरे देखने की क्षमता समाप्त हो गई। एक सिद्धांत ये भी है कि पीढ़ी दर पीढ़ी अंधकार में रहने के कारण उनकी आंखें पूर्ण विकसित नहीं हुई, लेकिन दूसरी इंद्रियां अधिक विकसित हो गईं। मछलियां पानी में कंपन, स्पर्श और रासायनिक संकेतों जैसे गंध इत्यादि के माध्यम से रास्ता और भोजन तुरंत पहचान लेती हैं। इसलिए श्रोताओं, कुटुम्बसर की मछलियों को दुनिया भर में ब्लाइंड केव फिशेस के नाम से भी जाना जाता है। और हाँ, इन गुफाओं की एक और बड़ी खास बात है, यहाँ के कुछ भागों में यदि फुसफुसा करके भी कुछ कहा जाए तो बड़ी दूर तक ये आवाज सुनाई पड़ती है। श्रोताओं, यहाँ पर कार्यकर्ता इको या गूंज का सिद्धांत। श्रोताओं, ये कहा जा सकता है कि ये गुफाएं वैज्ञानिकों के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि यहाँ के जंतु विकासवाद और भूविज्ञान के अध्ययन में महत्वपूर्ण है। तो श्रोताओं, ये थी जानकारी भारत की एक और रहस्यपूर्ण और अनोखी गुफा कुटुम्बसर के बारे में। अब सुनिए आज का प्रश्न आज की ही जानकारी से। हमारा आज का प्रश्न है, कुटुम्बसर की गुफाओं में फुसफुसाकर बोलने पर भी आवाजें साफ साफ क्यों सुनाई देती हैं? प्रश्न एक बार फिर से सुन लीजिए। कुटुम्बसर की गुफाओं में फुसफुसाकर बोलने पर भी आवाजें साफ साफ क्यों सुनाई देती हैं? आप हमें हमारे IVRS नंबर 8804405559 पर या ईमेल पर यानी audio@ciet.nic.in पर इस प्रश्न का उत्तर भेज सकते हैं। और हाँ, एक्स, इंस्टा, फेसबुक और लिंक्डइन पर भी आप CIET NCERT को फॉलो कर सकते हैं। और आइए अब सुनते हैं आज के हमारे ज्ञान और मनोरंजन से भरपूर शैक्षिक कार्यक्रम। तो सबसे पहले सुनते हैं कार्यक्रम लीव्स ऑन द ट्री आर फॉलिंग। श्रोताओं, अंग्रेजी का ये सुंदर गीत पतझड़ और वसंत के मौसमों के बीच की प्रकृति की सुंदरता का वर्णन करता है और विशेषकर संदेश देता है कि हमें प्रकृति का अवलोकन करके उनके सौंदर्य की प्रशंसा करनी चाहिए। ऐसा करके हम प्रकृति से बहुत कुछ सीख सकते हैं। द लीव्स ऑन द ट्रीज।
1: Children, have you ever seen the leaves growing in the tree? The new tender leaves spurting out from the branches? Like the flowers blossoming? Yes, we want to see them as the flowers blossom and leaves grow. But we never see them growing closely. Here is a song which makes you feel that you notice the growing of leaves and blossoming of flowers. Come on, let's sing the song to know and notice. But before we sing it, let's recite the song. Repeat after me, all right?
2: Yes!
1: The leaves on the tree.

0: इस खूबसूरत गीत के बाद आइए अब सुनते हैं अगला कार्यक्रम। हमारा अगला कार्यक्रम है फादर डॉक्टर कामिल बुल्के। ये कार्यक्रम हिंदी साहित्य के प्रकांड विद्वान डॉक्टर कामिल बुल्के के जीवन और उनके द्वारा हिंदी साहित्य को दिए गए योगदान के बारे में, विशेषकर तुलसी साहित्य में उनके द्वारा लिखे गए शोध की विस्तार से जानकारी देता है।
1: यूरोप के पश्चिमी भाग में एक छोटा लेकिन खूबसूरत देश है बेल्जियम। बेल्जियम में

0: एक प्रांत है फ्लैंडर्स। इस प्रांत में एक छोटा सा शांत और सुंदर शहर है रम्स कपेला। 1 सितंबर 1909 को अडोल्फ और मारिया बुल्के के घर में एक बालक का जन्म हुआ। माता पिता ने बड़े प्रेम से उसका नाम रखा कामिल बुल्के।
1: कामिल का अर्थ होता है पूजा की वेदी और बुल्के का अर्थ है सुगंधित पुष्प। और सच में जैसा कि नाम था, उन्होंने अपने नाम को 100% चरितार्थ किया। बचपन से ही उनकी गहरी रुचि अध्यात्म और साहित्य में दिखाई देने लगी थी। माता पिता अक्सर उनके बारे में बातचीत किया करते।
2: मारिया, क्या तुम्हें नहीं लगता कि कामिल का अध्यात्म की ओर कुछ ज्यादा ही झुकाव है?
1: मुझे तो अब ये लगने लगा है कि यदि ऐसा ही रहा तो एक दिन वो चर्च में सन्यासी बन जाएगा।
2: मुझे भी ऐसा ही लगता है।
1: स्कूली शिक्षा के बाद उन्होंने ल्यूवेन विश्वविद्यालय से सिविल इंजीनियरिंग में बीएससी डिग्री प्राप्त की और 1930 में स्पष्ट दिव्य अनुभूति प्राप्त होने पर शिक्षक और पुरोहित बनाने वाले जेसुइट समाज में शामिल हो गए।
0: 6 नवंबर 1935 को 17 दिनों की समुद्री यात्रा के बाद वो बंबई आ गए, जो अब मुंबई है। उन्होंने भारत को अपनी कर्मस्थली के रूप में चुना।
1: उन्होंने भारत भूमि को नमन किया। ये गोस्वामी तुलसीदास जी की भूमि है। दरअसल अपनी पढ़ने की आदत के कारण बेल्जियम में ही उन्होंने तुलसीदास जी की कई चौपाइयों का जर्मन अनुवाद पढ़ा था।
0: उनमें से एक चौपाई से वो बहुत प्रभावित हुए। चौपाई थी, धन्य जन्मु जग तीतल तासु, पितहि प्रमोद चरित सुनि जासु।
1: अर्थात उस बेटे का जीवन धन्य है जिसका यश और कीर्ति सुनकर पिता आनंदित होता है। इन पंक्तियों से वे इतने प्रभावित हुए कि कवि तुलसीदास जी के अनन्य भक्त बन गए। उन्होंने लिखा था,
3: विश्व साहित्य में माता और पुत्र के संबंधों की बहुत सारी चर्चा मिल जाएगी, लेकिन पिता पुत्र के संबंधों की ऐसी व्याख्या और ऐसा ऊंचा आदर्श मुझे सिर्फ भक्त कवि तुलसीदास जी की रामायण में ही मिला।
1: भारत आने पर उन्होंने जो देखा उसने उनके संपूर्ण जीवन के चिंतन और दर्शन को एक नया आयाम दे दिया। उन्होंने अपने भारत आगमन के समय को याद करते हुए अपनी एक पुस्तक एक ईसाई की आस्था राम कथा और हिंदी में लिखा है,
3: 1935 में मैं जब भारत पहुंचा, मुझे ये देखकर बड़ा आश्चर्य हुआ कि रास्ते में सभी संकेत पट्टों पर सूचनाएं और स्थानों के नाम अंग्रेजी में थे। मैंने ये जाना कि अनेक शिक्षित लोग अपनी सांस्कृतिक परंपराओं से अनजान थे और इंग्लिश में बोलना गर्व की बात समझते थे। मैंने विचार किया कि मैं हिंदी भाषा में सिद्धता को प्राप्त करने का पूरा प्रयास करूंगा। हिंदी स्थानीय और जनजातीय भाषाओं में जो ज्ञान प्रणाली और सीखने की सामग्री अंतर्निहित है, उनके संरक्षण और पुनरुत्थान से ही हमारा विकास संभव है।
1: मुंबई से वे दार्जिलिंग गए और अल्प प्रवास के बाद अंततः गुमला आ गए, जो आज के झारखंड राज्य में है। उन्होंने गुमला के सेंट इग्नेसियस विद्यालय में 3 साल तक गणित और भौतिकी पढ़ाया और हिंदी की कक्षा में अपने ही विद्यार्थियों को सहपाठी बनाकर हिंदी सीखने लगे। गणित पढ़।

0: पढ़ाने के बाद वे हिंदी की कक्षा में सबसे पीछे बैठ जाते थे और पूरी तन्मयता से हिंदी सीखते थे।
1: हिंदी के मूल रूप को समझने के लिए धीरे धीरे उन्होंने ब्रजभाषा और अवधी भी सीखी।
0: रांची आकर वे कुछ समय के लिए सन 1938 में झारखंड के ही एक शहर हजारीबाग गए और सेंट कोलंबस कॉलेज में पंडित बद्रीदत्त शास्त्री के निर्देशन में संस्कृत और स्वामी तुलसीदास की दो प्रमुख रचनाओं रामचरितमानस और विनय पत्रिका का गहन अध्ययन करने लगे।
1: फिर उन्होंने कलकत्ता विश्वविद्यालय से स्वतंत्र परीक्षार्थी के रूप में स्नातक की उपाधि प्राप्त की और उच्च अध्ययन के अभिप्राय से वो इलाहाबाद विश्वविद्यालय पहुंचे और वहां के हिंदी विभाग के अध्यक्ष डॉक्टर धीरेंद्र वर्मा से मिले।
2: आइए आइए फादर बुलके, आपका स्वागत है।
3: जी डॉक्टर धीरेंद्र, आपके स्वागत से मैं अनुग्रहित और कृतार्थ हुआ। मेरी हार्दिक अभिलाषा है कि मैं हिंदी में अपना स्नातकोत्तर अध्ययन इलाहाबाद विश्वविद्यालय से करूं।
2: ठीक है, लेकिन उम्मीदवार की कुछ परीक्षा तो लेनी ही होगी।
3: जी मैं प्रस्तुत हूं।
2: तो फादर, मैं चाहता हूं कि आप तुलसीदास जी की विनय पत्रिका के दो पदों की इसी समय सप्रसंग व्याख्या करें। ये लीजिए।
3: जी अवश्य।
0: फादर कामिल बुलके ने कुछ ही देर में उन पदों की लिखित व्याख्या कर दी। इस यूरोपीय श्वेत वर्णीय ईसाई पुरोहित को डॉक्टर वर्मा ने प्रारंभ में नौसिखिया समझा था, लेकिन जब उन्होंने व्याख्या पढ़ी तो
4: ओह अद्भुत। तो फादर, अब विलंब कैसा? आप इसी समय से विश्वविद्यालय के हिंदी संकाय में अध्ययन के लिए आमंत्रित हैं।
3: धन्यवाद डॉक्टर धीरेंद्र, ये मेरा सौभाग्य होगा।
4: जी
0: स्नातकोत्तर अध्ययन के बाद फादर कामिल बुलके ने फिर पीछे मुड़कर नहीं देखा। उन्होंने डॉक्टर धीरेंद्र वर्मा की प्रेरणा से डॉक्टर माता प्रसाद के निरीक्षण में शोध कार्य किया।
1: इससे जुड़ी एक बड़ी रोचक घटना है। फादर कामिल बुलके चाहते थे कि उनका शोध हिंदी में प्रकाशित हो, लेकिन उन दिनों सभी शोध अंग्रेजी में ही हुआ करते थे।
0: उन दिनों इलाहाबाद विश्वविद्यालय के कुलपति डॉक्टर अमरनाथ झा थे। फादर कामिल बुलके ने इसके लिए विश्वविद्यालय के कुलपति से मिलने का समय मांगा।
3: क्या मैं अंदर आ सकता हूँ कुलपति महोदय?
5: आइए आइए फादर बुलके। मुझे बताया गया है कि रामकथा पर आपका शोध बहुत अच्छा बन पड़ा है। आपने इसमें बहुत से नए आयाम भी जोड़े हैं।
3: जी कुलपति महोदय, मैं अपने शोध पत्र को प्रकाशित करने के बारे में ही आपसे विमर्श करने आया हूँ।
5: जी जी,
3: मैं चाहता हूँ कि मुझे अपने शोध पत्र को देवनागरी में प्रकाशित करने की अनुमति दी जाए।
5: मगर फादर, आप जानते हैं कि विश्वविद्यालय के नियमानुसार शोध पत्र सिर्फ अंग्रेजी में ही प्रकाशित किए जा सकते हैं।
3: कुलपति महोदय, जैसा कि आपको ज्ञात है, मेरा शोध का विषय ही रामकथा की उत्पत्ति और विकास है।
5: जी
3: मैं दृढ़ता से विश्वास करता हूं रामकथा और तुलसी की आत्मा के विराट सौंदर्य के दर्शन केवल और केवल उनकी मातृभाषा में ही हो सकते हैं।
5: जी मैं आपकी भावनाओं का सम्मान करता हूं फादर बुलके।
3: तो मैं आपकी इस प्रतिक्रिया को एक सकारात्मक उत्तर के रूप में देखने की अपेक्षा करता हूं।
5: जी
0: तो फिर क्या था, विश्वविद्यालय की अकादमिक परिषद की सभा बुलाई गई और लंबे विचार विमर्श के बाद नियमावली में विधिवत परिवर्तन किया गया। फादर का ये अनुरोध मान लिया गया। भारत के शोध परिदृश्य में ये एक महत्वपूर्ण

0: महत्वपूर्ण घटना थी, क्योंकि इसके द्वारा देवनागरी में शोध प्रबंध लिखने का रास्ता सबके लिए साफ हो गया और आदिवासी भाषाओं में भी पीएचडी स्तर तक पढ़ाई होनी शुरू हो गई।
1: उन्होंने राम और राम कथा के बारे में अपने शोध ग्रंथ में लिखा है।
2: देखिए, राम वाल्मीकि कथा के मिथकीय पात्र नहीं हैं, बल्कि वे तो इतिहास पुरुष हैं, जिनकी व्याप्ति सिर्फ भारत में ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया में है। रामायण सिर्फ धार्मिक साहित्य ही नहीं है बल्कि जीवन जीने के तरीके का दस्तावेज है।
0: उनके शोध की विशेषता ये है कि उन्होंने रामायण से संबंधित किसी भी विषय को छोड़ा नहीं है। हिंदी के अतिरिक्त उन्होंने तमिल, तेलुगु, मलयालम, कन्नड़, बांग्ला, कश्मीरी, सिहली आदि भाषाओं के साहित्य में भी उपलब्ध राम कथा की गहन छानबीन की है।
1: उन्होंने तेलुगु में रचित श्री रंगनाथ रामायण और महर्षि कम्बन द्वारा तमिल में रचित कम्ब रामायण को भी संदर्भित किया। चार भागों में विभक्त 600 पृष्ठों में छपी उनकी ये थीसिस एक प्रतिनिधि शोध ग्रंथ साबित हुई और भारत सहित पूरे विश्व में विभिन्न भाषाओं में प्रकाशित हुई। इसके बाद सारी दुनिया फादर बुल्के को जानने लगी।
0: अब जहां भी राम कथा होती, फादर कामिल बुल्के का नाम वक्ताओं की सूची में सबसे ऊपर होता। उन्होंने देश भर में राम कथा पर व्याख्यान दिए। वे कहा करते थे,
2: सब हैं नचावत राम गोसाई, मोहे नचावत तुलसी गोसाई।
0: सन 1950 में उन्हें बहुत सम्मान पूर्वक भारत की नागरिकता प्रदान की गई। इसी वर्ष वे रांची के सेंट जेवियर कॉलेज के हिंदी और संस्कृत विभाग के अध्यक्ष बना दिए गए और आजीवन उसी पद पर रहे। वे हमेशा अपने विद्यार्थियों को उनकी अपनी भाषा में ही बातचीत करने हेतु प्रोत्साहित करते थे।
1: सबसे मशहूर अंग्रेजी हिंदी शब्दकोश लिखने वाले फादर कामिल बुल्के ही हैं। 30 वर्षों की उनकी हिंदी साधना का जीवंत दस्तावेज उनका शब्दकोश माना जाता है।
0: उन्होंने इसमें 40,000 शब्द जोड़े और उसे प्रशासनिक, वैज्ञानिक और तकनीकी दृष्टि से अद्यतन करते रहे। फादर कामिल बुल्के बहुभाषाविद थे। वो अपनी मातृभाषा फ्लेमिश के अतिरिक्त अंग्रेजी, फ्रेंच, जर्मन, लैटिन, ग्रीक, संस्कृत और हिंदी पर भी संपूर्ण अधिकार रखते थे। इन भाषाओं के ज्ञान के कारण ही उन्हें शब्दकोश बनाने में बहुत सहायता मिली। उन्होंने लिखा था,
2: जब मैं अपने जीवन पर विचार करता हूं तो मुझे लगता है ईसा मसीह, हिंदी और तुलसीदास ये वास्तव में मेरी आध्यात्मिक साधना के 3 प्रमुख घटक हैं और मेरे लिए इन 3 तत्वों में कोई विरोध नहीं है बल्कि गहरा संबंध है। मैं ईसा मसीह का परम भक्त हूं, हिंदी मेरा अनुराग है और गोस्वामी तुलसीदास मेरी प्रेरणा।
0: कामिल बुल्के की हिंदी सेवाओं के लिए 1974 में भारत सरकार ने उन्हें पद्म भूषण की उपाधि से सम्मानित किया। जब लोग उन्हें फादर कहते तो वे किंचित संकोच से बोल उठते,
2: फादर अंग्रेजी शब्द है, यदि मुझे कामिल बाबा कहो तो सचमुच मुझे बहुत अच्छा लगेगा।
0: 17 अगस्त 1982 को दिल्ली में इस अद्भुत शोध शिल्पी, राम कथा अनुरागी, बहुभाषाविद और हिंदी भाषा के अनन्य सेवक का निधन हो गया। उनकी मृत्यु शैया पर मात्र 2 पुस्तकें थीं, बाइबल और गोस्वामी तुलसीदास जी की विनय पत्रिका। उन्हें दिल्ली में ही दफनाया गया।

0: 36 साल बाद वर्ष 2018 में पद्म भूषण फादर कामिल बुल्के का पार्थिव अवशेष दिल्ली से उनकी कर्मभूमि रांची लाया गया। उनके अवशेष को पूरे सम्मान के साथ रांची सेंट जेवियर कॉलेज में दफनाया गया।
1: महान शब्द शिल्पी और हिंदी साहित्य के इस पुरोधा फादर कामिल बुल्के बाबा को हमारा आभार सहित शत शत नमन।
2: डॉक्टर कामिल बुल्के, अभी आपने सुना ये कार्यक्रम। और अब इसी के साथ हमारा आज का उमंग कार्यक्रम यहीं पर समाप्त होता है। तो अब अपने साथी अजीत को उमंग कार्यक्रम की तकनीकी टीम के साथ कल तक के लिए आज्ञा दीजिए। नमस्कार।
3: उमंग उमंग उमंग उमंग
4: सुनुथिले NCERT द्वारा प्रायोजित कार्यक्रम। श्रोतामानंकु जणै दोछु जे आजि दिन 2:45 रे शुणिपारिबे हिंदी कथाचित्र गीतर कार्यक्रम। अपराह्न 3:00 रे किसान संप्रदायर सामाजिक एवं सांस्कृतिक जीवनधारा उपरे पर्यवेक्षित किसान भाषार विशेष कार्यक्रम माक्का पुप्पु झक्का झक्का। अपराह्न 3:30 रे ओडिया कथाचित्र गीतर कार्यक्रम। अपराह्न 4:02 रे पुणि थरे हेलो अनुरोध। ए थिला आजि प्रसारित हेबाकु थिबा किछि कार्यक्रम संपर्करे सूचना। श्रोता माने कार्यक्रम शुणुछन्ती आकाशवाणी संबलपुर केन्द्ररु। वर्तमान समय दिन गोटाए हेबाकु जाउछि। हिंदीरे संवाद शुणन्तु। रिले करि प्रचार करुछु आकाशवाणी दिल्ली केन्द्ररु।
5: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं कनकलता। भारत ने संयुक्त राष्ट्र में पाकिस्तान के कश्मीर मुद्दा उठाने पर कड़ी आपत्ति व्यक्त की है। पाकिस्तान पर संयुक्त राष्ट्र मंच का राजनीतिकरण करने का आरोप लगाते हुए भारत ने कहा कि साध्यक्ष के रूप में निष्पक्ष रहने के बजाय पाकिस्तान ने पद का दुरुपयोग किया है। संयुक्त राष्ट्र में भारत के स्थायी प्रतिनिधि पी हरीश ने साध्यक्ष के तौर पर पाकिस्तान के आचरण की आलोचना की। पाकिस्तान के स्थायी प्रतिनिधि आसिम इफ्तिखार अहमद की टिप्पणियों के जवाब में पी हरीश ने जम्मू कश्मीर पर भारत के लंबे समय से चले आ रहे रुख को दोहराया। उन्होंने कहा कि केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर पूरी तरह से भारत का आंतरिक मामला है। ईरान के तेहरान में भारतीय दूतावास ने सुरक्षा स्थिति में सुधार को देखते हुए भारतीय नागरिकों के लिए संशोधित परामर्श जारी किया है। दूतावास ने कहा कि बदलते घटनाक्रमों के बावजूद भारतीय नागरिकों को अगली सूचना तक सभी गैर जरूरी यात्राओं से बचना चाहिए। देश में रह रहे भारतीय नागरिकों और बहुत आवश्यक होने पर ईरान यात्रा करने वालों को अत्यधिक सावधानी तथा सतर्कता बरतने और स्थिति पर लगातार नजर रखने की सलाह दी गई है। अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो 3 दिन की खाड़ी क्षेत्र की यात्रा पर हैं। इसका उद्देश्य ईरान के साथ हुए नए संवाद और समझौते के बाद प्रमुख अरब सहयोगियों को विश्वास दिलाना है। 4 महीने से चल रहे पश्चिम एशिया संघर्ष को समाप्त करने के लिए अमेरिका ने ईरान के साथ नया समझौता किया है। यात्रा से पहले श्री रूबियो ने कहा कि उनकी यात्रा का उद्देश्य ईरान और अमेरिका की बातचीत में खाड़ी देशों की राय को महत्व देना है। उन्होंने कहा कि किसी भी समझौते के अंतर्गत ईरान को होर्मुज जलडमरू मध्य से गुजरने वाले जहाजों पर टोल लगाने की इजाजत नहीं दी जाएगी। उन्होंने टोल वसूली को अंतर्राष्ट्रीय कानून के खिलाफ बताया। आज पासपोर्ट सेवा दिवस है। ये दिन 24 जून 1967 को पासपोर्ट अधिनियम के लागू होने के उपलक्ष्य में मनाया जाता है। इस अवसर पर विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर ने कहा कि पासपोर्ट सेवा कार्यक्रम के दूसरे चरण का क्रियान्वयन चिप आधारित ई पासपोर्ट की शुरुआत, नए पासपोर्ट सुरक्षा केंद्रों और पोस्ट ऑफिस पासपोर्ट सेवा केंद्र की स्थापना तथा रिकॉर्ड स्तर पर पासपोर्ट जारी करने से यात्रा सुगम हो रही है। भारी उद्योग मंत्री HD कुमार स्वामी ने इस्पात उद्योग से भविष्य के विकास के लिए डिजिटलीकरण अपनाने को कहा है। आज नई दिल्ली में इस्पात क्षेत्र में डिजिटलीकरण

0: पर आयोजित चिंतन शिविर में उन्होंने ये बात कही। इस्पात क्षेत्र के मजबूत प्रदर्शन का उल्लेख करते हुए श्री कुमार स्वामी ने कहा कि देश वर्ष 2018 से विश्व के दूसरे सबसे बड़े इस्पात उत्पादक के रूप में अपनी मजबूत स्थिति बनाए हुए है। प्रवर्तन निदेशालय मुंद्रा बंदरगाह से 3000 किलोग्राम मादक पदार्थ आयात मामले से जुड़े धनशोधन मामले में दिल्ली के 5 स्थानों पर तलाश अभियान चला रहा है। निदेशालय के अधिकारियों ने बताया कि ये तलाशी हरप्रीत सिंह तलवार, शम शुदरुन और उनके सहयोगियों से जुड़े परिसरों पर की जा रही है। अधिकारियों ने बताया कि मादक पदार्थ से प्राप्त धन का कथित तौर पर दिल्ली के नाइट क्लबों में निवेश किया गया था। आवास और शहरी मामलों के मंत्री मनोहर लाल ने राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में सेंट्रल विस्टा कॉरिडोर के लिए केंद्रीय सचिवालय मेट्रो स्टेशन पर निर्माण कार्य का शुभारंभ किया। संवाददाताओं से बात करते हुए उन्होंने इस क्षण को ऐतिहासिक बताया और कहा कि ये परियोजना आवागमन को सुगम बनाएगी।
1: बहुत ही ऐतिहासिक मूवमेंट है जब देश की राजधानी जहां से पूरी सरकार चलनी है सेंट्रल विस्टा और यहां के कर्मचारी और यहां के जितने भी कार्यालयों में काम करने वाले सब लोग उनको एक ऐसी सुविधा प्रदान करने के लिए आज भूमि पूजन अथवा ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी आज ये की गई है और ये जब कंप्लीट हो जाएगी उसके बाद दिल्ली के बहुत से छोर आपस में जहां जहां मेट्रो लाइन चलती हैं उनको ये जोड़ेगी। अब ये जो लाइन है ये आर के आश्रम से लेकर के और इंद्रप्रस्थ तक जिसके अंदर 9 स्टेशंस हैं।
0: घरेलू शेयर बाजार के संवेदी सूचकांक में आज दोपहर के कारोबार में लगभग 0.7% की वृद्धि दर्ज की गई। ताजा समाचार मिलने तक सेंसेक्स 603 अंक के उछाल के साथ 76,804 पर जबकि निफ्टी 154 अंक बढ़कर 23,978 पर कारोबार कर रहा था। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: आकाशवाणी संबलपुर आरंभ करुछु सुगम संगीतर कार्यक्रम शुणंतु दुर्गामाधव पंडांक रचनारे कार्यक्रमर प्रथम गीत कंठशिल्पी असित कुमार अमांता।

0: नमस्कार, आकाशवाणी से दोपहर समाचार के साथ मैं कनकलता। भारत ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में कश्मीर मुद्दे पर पाकिस्तान के खिलाफ कड़ा विरोध दर्ज कराया। पाकिस्तान पर सहअध्यक्ष के तौर पर अपनी स्थिति का गलत इस्तेमाल करने का आरोप लगाया। ईरान में भारतीय दूतावास ने अपने नागरिकों के लिए संशोधित परामर्श जारी कर गैर जरूरी यात्राओं से बचने की सलाह दी। कोंकण और गोवा में आज मूसलाधार बारिश का रेड अलर्ट। अरुणाचल प्रदेश के कुछ हिस्सों में तेज बारिश और अचानक बाढ़ के बाद असम में हाई अलर्ट। हॉकी इंडिया ने अगले महीने ब्रिटेन दौरे के लिए 24 सदस्यीय जूनियर महिला टीम की घोषणा की और फीफा फुटबॉल विश्व कप में कोलंबिया ने कांगो को 1-0 से हराकर नॉकआउट चरण में जगह बनाई। अब समाचार विस्तार से। भारत ने संयुक्त राष्ट्र में पाकिस्तान के कश्मीर मुद्दा उठाने पर कड़ी आपत्ति व्यक्त की है। पाकिस्तान पर संयुक्त राष्ट्र मंच का राजनीतिकरण करने का आरोप लगाते हुए भारत ने कहा कि सहअध्यक्ष के रूप में निष्पक्ष रहने के बजाय पाकिस्तान ने पद का दुरुपयोग किया है। संयुक्त राष्ट्र में भारत के स्थायी प्रतिनिधि पी हरीश ने सहअध्यक्ष के तौर पर पाकिस्तान के आचरण की आलोचना की। पाकिस्तान के स्थायी प्रतिनिधि आसिम इफ्तिखार अहमद के टिप्पणियों के जवाब में पी हरीश ने जम्मू कश्मीर पर भारत के लंबे समय से चले आ रहे रुख को दोहराया। उन्होंने कहा कि केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर पूरी तरह से भारत का आंतरिक मामला है।
1: मैं पाकिस्तानी पक्ष की टिप्पणियों का उल्लेख करता हूं। ये हैरान कर देने वाला है कि ऐसे मंच पर जहां राजनीतिक मुद्दों पर संतुलित और निष्पक्ष चर्चा की उम्मीद की जाती है, ऐसी बातें कही गईं। मैं दोहराना चाहता हूं कि जम्मू कश्मीर पूर्ण रूप से भारत का घरेलू मामला है।
0: ईरान के तेहरान में भारतीय दूतावास ने सुरक्षा स्थिति में सुधार को देखते हुए भारतीय नागरिकों के लिए संशोधित परामर्श जारी किया है। एक रिपोर्ट।
2: भारतीय दूतावास ने कहा कि बदलते घटनाक्रमों के बावजूद भारतीय नागरिकों को अगली सूचना तक सभी गैर जरूरी यात्राओं से बचना चाहिए। बहुत आवश्यक होने पर ईरान यात्रा करने वालों को अत्यधिक सावधानी और सतर्कता बरतने तथा स्थिति पर लगातार नजर रखने की सलाह दी गई है। विश्वसनीय स्रोतों के जरिए स्थानीय घटनाक्रमों पर बारीकी से नजर रखने और स्थानीय अधिकारियों के निर्देशों का पालन करने को भी कहा गया है। लोगों से दूतावास को अपने बारे में जानकारी देने की सलाह दी गई है। ताजा जानकारी और आगामी परामर्श के लिए दूतावास की आधिकारिक वेबसाइट और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर लगातार नजर बनाए रखने को कहा गया है। किसी भी तरह की सहायता के लिए दूतावास ने आपातकालीन हेल्पलाइन नंबर जारी किए हैं। ये नंबर हैं +98912810915। दूसरा नंबर है +98912810909। तीसरा नंबर +98912810910।

0: दो, और चौथा नंबर है +989932179359। इसके अलावा भारतीय नागरिक cons.tehran@mea.gov.in पर ईमेल के जरिए भी दूतावास से संपर्क कर सकते हैं। समाचार कक्ष से विशाल शर्मा।
1: विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने चुनौतीपूर्ण वैश्विक परिवेश के बीच भारत दक्षिण कोरिया संबंधों को और मजबूत करने की आवश्यकता पर बल दिया है। उन्होंने कहा कि समान मूल्यों और आपसी विश्वास वाले देशों को और अधिक निकटता से मिलकर काम करना चाहिए। सियोल में दक्षिण कोरिया के विदेश मंत्री चो ह्यून के साथ बैठक के दौरान उन्होंने ये बात कही।
2: इस साझेदारी को आगे बढ़ाना हमारी जिम्मेदारी है। इसमें सरकार के अलग अलग विभाग और देश की अर्थव्यवस्था के विभिन्न पहलू शामिल हैं, जिनके बीच तालमेल बैठाना बहुत आवश्यक है। मैं कहूंगा कि हमें भविष्य को ध्यान में रखते हुए एक आधुनिक साझेदारी की ओर बढ़ना चाहिए।
1: अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो 3 दिन की खाड़ी क्षेत्र की यात्रा पर हैं। हमारे संवाददाता ने बताया है कि इसका उद्देश्य ईरान के साथ हुए नए संवाद और समझौते के बाद प्रमुख अरब सहयोगियों को विश्वास दिलाना है।
2: 4 महीने से जारी पश्चिम एशिया संघर्ष को समाप्त करने के लिए अमेरिका ने ईरान के साथ नया समझौता किया है। श्री रूबियो कल देर रात अबू धाबी पहुंचे। उनका संयुक्त अरब अमीरात, कुवैत और बहरीन में बातचीत का कार्यक्रम है। इस सप्ताह के अंत में वे गल्फ कोऑपरेशन काउंसिल के अधिकारियों से मिलेंगे। इस दौरान वे क्षेत्रीय सहयोगियों को अमरीका और ईरान के बीच लागू अंतरिम शांति समझौते और संभावित अंतिम समझौते के ढांचे के बारे में जानकारी देंगे। यात्रा से पहले श्री रूबियो ने कहा कि उनकी यात्रा का उद्देश्य ईरान और अमेरिका की बातचीत में खाड़ी देशों की राय को महत्व देना है। उन्होंने कहा कि किसी भी समझौते के अंतर्गत ईरान को होर्मुज जलडमरू मध्य से गुजरने वाले जहाजों पर टोल लगाने की अनुमति नहीं दी जाएगी। उन्होंने टोल वसूली को अंतर्राष्ट्रीय कानून के खिलाफ बताया। सप्ताहांत में स्विट्जरलैंड में अमेरिका और ईरान के बीच बातचीत सकारात्मक रही, हालांकि दोनों पक्षों ने बैठक के बारे में अलग अलग राय व्यक्त की है। दुबई से विनोद कुमार की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मैं मुकेश कुमार बल।
1: ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन एआईआर ऐप पर भी उपलब्ध हैं। दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। प्रवर्तन निदेशालय मुंद्रा बंदरगाह से 3000 किलोग्राम मादक पदार्थ आयात मामले से जुड़े धनशोधन मामले में दिल्ली के 5 स्थानों पर तलाश अभियान चला रहा है। निदेशालय के अधिकारियों ने बताया कि ये तलाशी हरप्रीत सिंह तलवार, शम शुदरुन और उनके सहयोगियों से जुड़े परिसरों पर की जा रही है। अधिकारियों ने बताया कि मादक पदार्थ से प्राप्त धन का कथित तौर पर दिल्ली के नाइट क्लबों में निवेश किया गया था। भारतीय जनता पार्टी ने कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे पर कर्नाटक में उनके परिवार द्वारा संचालित एक ट्रस्ट को भूमि आवंटन से जुड़े कथित घोटाले में संलिप्त होने का आरोप लगाया है। पार्टी प्रवक्ता प्रदीप भंडारी ने आज नई दिल्ली में कहा कि वर्ष 2024 में कर्नाटक औद्योगिक क्षेत्र विकास बोर्ड ने एयरोस्पेस और रक्षा क्षेत्रों में अनुसंधान तथा विकास के लिए ट्रस्ट को लगभग 5 एकड़ औद्योगिक भूमि आवंटित की थी। श्री भंडारी ने आरोप लगाया कि इन क्षेत्रों में कोई पूर्व अनुभव न होने के बावजूद ट्रस्ट को लगभग 100 करोड़ रुपये की अनुमानित कीमत की भूमि आवंटित की गई। भारी उद्योग मंत्री एचडी कुमार स्वामी ने इस्पात उद्योग से भविष्य के विकास के लिए डिजिटलीकरण अपनाने को कहा है। आज नई दिल्ली में इस्पात क्षेत्र में डिजिटलीकरण पर आयोजित चिंतन शिविर में उन्होंने ये बात कही। इस्पात क्षेत्र के मजबूत प्रदर्शन का उल्लेख करते हुए श्री कुमार स्वामी ने कहा कि देश वर्ष 2018 से विश्व के दूसरे सबसे बड़े इस्पात उत्पादक के रूप में अपनी मजबूत स्थिति बनाए हुए है। आवास और शहरी मामलों के मंत्री मनोहर लाल ने राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में सेंट्रल विस्टा कॉरिडोर के लिए केंद्रीय सचिवालय मेट्रो स्टेशन पर निर्माण कार्य का शुभारंभ किया। संवाददाताओं से बात करते हुए उन्होंने इस क्षण को ऐतिहासिक बताया और कहा कि ये परियोजना आवागमन को सुगम बनाएगी।
3: बहुत ही ऐतिहासिक मूवमेंट है जब देश की राजधानी जहां से पूरी सरकार चलनी है सेंट्रल विस्टा और यहां के कर्मचारी और यहां के जितने भी कार्यालयों में काम करने वाले सब लोग उनको एक ऐसी सुविधा प्रदान करने के लिए आज भूमि पूजन अथवा ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी आज ये की गई है और ये जब कंप्लीट हो जाएगी उसके बाद दिल्ली के बहुत से छोर आपस में जहां जहां मेट्रो लाइन

0: चलती हैं उनको ये जोड़ेगी। अब ये जो लाइन है ये आर के आश्रम से लेकर के और इंद्रप्रस्थ तक, जिसके अंदर 9 स्टेशन है।
1: केंद्रीय विद्यालयों के लिए 36वीं राष्ट्रीय युवा संसद प्रतियोगिता 2025-26 का पुरस्कार वितरण समारोह कल नई दिल्ली में आयोजित किया जाएगा। संसदीय कार्य राज्य मंत्री अर्जुन राम मेघवाल इस समारोह की अध्यक्षता करेंगे। श्री मेघवाल विजेता विद्यार्थियों और विद्यालयों को पुरस्कार प्रदान करेंगे। पश्चिम बंगाल में कोलकाता के तारातला के पास निर्माणाधीन गोदाम के छत गिरने से 5 लोगों के मारे जाने की आशंका है। मलबे में कुछ और लोग फंसे हुए हैं। अग्निशमन और आपातकालीन सेवा कर्मी तथा पुलिस बल मौके पर पहुंच चुके हैं। बचाव अभियान जारी है। आज पासपोर्ट सेवा दिवस है। ये दिन 24 जून 1967 को पासपोर्ट अधिनियम के लागू होने के उपलक्ष्य में मनाया जाता है। इस अवसर पर विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर ने कहा कि पासपोर्ट सेवा कार्यक्रम के दूसरे चरण का क्रियान्वयन, चिप आधारित ई पासपोर्ट की शुरुआत, नए पासपोर्ट सुरक्षा केंद्रों और पोस्ट ऑफिस पासपोर्ट सेवा केंद्र की स्थापना तथा रिकॉर्ड स्तर पर पासपोर्ट जारी करने से यात्रा सुगम हो रही है। संचार मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कहा कि सेवा, सुशासन और नागरिक सुविधा के संकल्प के साथ इंडिया पोस्ट द्वारा संचालित डाकघर पासपोर्ट सेवा केंद्र के माध्यम से पासपोर्ट सेवाएं देश के सुदूर क्षेत्रों तक भी पहुंच रही हैं। गृह मंत्री अमित शाह और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने आज रानी दुर्गावती को श्रद्धांजलि अर्पित की। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री शाह ने कहा कि रानी दुर्गावती एक वीर रानी और नारी शक्ति का प्रतीक थी। रक्षा मंत्री ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि रानी दुर्गावती ने अपनी मातृभूमि और संस्कृति की रक्षा में अद्वितीय साहस और वीरता का परिचय दिया। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIRNews हिंदी को फॉलो कर सकते हैं। ये आकाशवाणी है। मौसम विभाग ने कोंकण और गोवा में आज मूसलाधार बारिश का रेड अलर्ट जारी किया है। तटीय कर्नाटक और मध्य महाराष्ट्र में भी अगले 2 दिन इसी तरह का मौसम रह सकता है। असम, मेघालय, कर्नाटक के भीतरी भाग, ओडिशा, तेलंगाना, पश्चिम बंगाल और सिक्किम में 29 तारीख तक तेज वर्षा का अनुमान व्यक्त किया गया है। दिल्ली, हरियाणा, चंडीगढ़, पंजाब, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, जम्मू कश्मीर, लद्दाख में शनिवार तक तेज हवा के साथ वर्षा का अनुमान है। अरुणाचल प्रदेश के निचले सुबनसिरी जिले में तेज बारिश से असम के विभिन्न सीमावर्ती जिले के निचले इलाकों में बाढ़ की आशंका बढ़ गई है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि असम में सभी संबंधित विभाग हाई अलर्ट पर हैं।
2: अरुणाचल प्रदेश में हुई भारी बारिश के बाद असम में संभावित बाढ़ की स्थिति को देखते हुए राज्य सरकार ने सभी संभावित एजेंसियों को हाई अलर्ट पर रखा है। इसके परिणाम स्वरूप असम में धेमाजी, लखीमपुर, विश्वनाथ और सोनितपुर सहित निचले क्षेत्रों में नदियों के जलस्तर और प्रवाह की गति में उल्लेखनीय वृद्धि होने की संभावना है। अगले 1-2 दिनों में बाढ़ का पानी और आगे के क्षेत्रों की ओर बढ़ सकता है। SDRF, NDRF और अन्य इमरजेंसी रेस्पॉन्स दलों को तैयार रहने के निर्देश दिए गए हैं। वहीं जिला प्रशासन को संवेदनशील क्षेत्रों पर कड़ी निगरानी रखने और आवश्यक एहतियाती उपाय सुनिश्चित करने को कहा गया है। निचले तथा बाढ़ संभावित क्षेत्रों में रहने वाले लोगों को सतर्क रहने, प्रशासन द्वारा जारी दिशा निर्देश पालन करने, जलमग्न क्षेत्रों से दूर रहने तथा छोटी नावों से यात्रा न करने की सलाह दी गई है। राकेश तोले, आकाशवाणी समाचार, गुवाहाटी।
1: हॉकी इंडिया ने 5-14 जुलाई तक ब्रिटेन दौरे के लिए 24 सदस्यीय जूनियर महिला टीम की घोषणा कर दी है। भारतीय टीम नए कोच टिम वाइट के नेतृत्व में जूनियर एशिया कप सहित आगामी अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं की तैयारी के सिलसिले में स्कॉटलैंड और इंग्लैंड में 7 मैच खेलेगी। खैदम शिलेमा जानू टीम की कमान संभालेंगी, जबकि निधि और एंगल हर्षारानी मिंज गोलकीपर की जिम्मेवारी संभालेंगी। फीफा फुटबॉल विश्व कप में आज मैक्सिको में खेले गए ग्रुप के मैच में कोलंबिया ने कांगो को 1-0 से हराकर नॉकआउट चरण में जगह बना ली। डैनियल मुनोज के दूसरे हाफ में किए गए गोल की मदद से कोलंबिया ने लगातार दूसरी जीत हासिल करते हुए अगले दौर में प्रवेश किया। इससे पहले पुर्तगाल ने ह्यूस्टन में इसी ग्रुप के एक मैच में उज्बेकिस्तान को 5-0 से हराया। 41 वर्षीय क्रिस्टियानो रोनाल्डो के 2 शानदार गोल की बदौलत पुर्तगाल ने उज्बेकिस्तान पर 5-0 से जीत दर्ज की। रोनाल्डो अब 6 अलग अलग विश्व कप टूर्नामेंट में गोल करने वाले पहले खिलाड़ी बन गए हैं। उन्हें मैन ऑफ द मैच चुना गया। घरेलू शेयर बाजार के संवेदी सूचकांक

0: अंक में आज दोपहर के कारोबार में 1% की वृद्धि दर्ज की गई। ताजा समाचार मिलने तक सेंसेक्स 908 अंक की उछाल के साथ 77,109 पर, जबकि निफ्टी 241 अंक बढ़कर 24,065 पर कारोबार कर रहा था। केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख के लेह में स्थित ऐतिहासिक हेमिस मठ में आज उत्साह और श्रद्धा के साथ हेमिस उत्सव की शुरुआत हुई। दो दिन के उत्सव में देश विदेश के हजारों श्रद्धालु, पर्यटक, संस्कृति प्रेमी और बौद्ध विद्वान शामिल हो रहे हैं। प्रत्येक वर्ष मनाया जाने वाला हेमिस उत्सव लद्दाख के सबसे महत्वपूर्ण सांस्कृतिक और धार्मिक आयोजनों में से एक है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। भारत ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में कश्मीर मुद्दे पर पाकिस्तान के खिलाफ कड़ा विरोध दर्ज कराया। पाकिस्तान पर सहअध्यक्ष के तौर पर अपनी स्थिति का गलत इस्तेमाल करने का आरोप लगाया। ईरान में भारतीय दूतावास ने अपने नागरिकों के लिए संशोधित परामर्श जारी कर गैर जरूरी यात्राओं से बचने की सलाह दी। कोंकण और गोवा में आज मूसलाधार बारिश का रेड अलर्ट। अरुणाचल प्रदेश के कुछ हिस्सों में तेज बारिश और अचानक बाढ़ के बाद असम में हाई अलर्ट। हॉकी इंडिया ने अगले महीने ब्रिटेन दौरे के लिए 24 सदस्यीय जूनियर महिला टीम की घोषणा की और फीफा फुटबॉल विश्व कप में कोलंबिया ने कांगो को 1-0 से हराकर नॉकआउट चरण में जगह बनाई। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
1: बन्या हेउ बा महाबात्या सबु परिस्थिति रे
2: गारु सहर जाए सबु स्थान रे
1: आबाल वृद्ध वनिता समस्तंक पाई
2: जुआंग ओ सांतालंक ठारु बंडा एवं कोयांक जाए सबुरी भाषा रे
1: केवल आकाशवाणी।

0: इससे हम एक समन्वित और एकीकृत दृष्टिकोण का विकास करते हुए आगे बढ़ सकते हैं। समुद्री परिदृश्य में ओडिशा का एक अनोखा स्थान है।
1: कार्यक्रम रे मुख्यमंत्री ओडिशार सामुद्रिक इतिहास संपर्क रे आलोकपात करी कहिसेंते भारतर सामुद्रिक विकास गाथा रे राज्यर प्रमुख भूमिका रहिछि। ओडिशार सामुद्रिक रणनीति को आहुरी मजबूत करबा पई गंजाम ठारे एक गभीर समुद्र बंदर एवं पारादीप निकट रे एक शिप बिल्डिंग क्लस्टर निर्माण करा जाउछि। केंद्र सरकारक सागर आक्ट ईस्ट पॉलिसी बिमस्टेक आदि प्रगतिशील नीति को राज्य सरकार संपूर्ण समर्थन करुछन्ते। माछधरा डंगागुड़िकरे नवमित्र ट्रांसपंडर संजोग एवं उपकूलवर्ती ग्रामर उन्नति आदि कार्यक्रम सामुद्रिक सुरक्षा व्यवस्था को सुदृढ़ करने दिगरे गुरुत्वपूर्ण पदक्षेप बोली मुख्यमंत्री कहते। कार्यक्रम में जातीय मैरिटाइम सुरक्षा समन्वयकारी अवसरप्राप्त वाइस एडमिराल विश्वजित दासगुप्ता जोगदे सामुद्रिक सुरक्षा क्षेत्र में विभिन्न मॉडल और रणनीतिक ढांचा उपर गुरुत्वारोप करते। केन्द्र सामाजिक न्याय एवं सशक्तिकरण राष्ट्रमंत्री रामदास अठावाले आज ओडिशा गस्तर आसी लोकसभा भवन में मुख्यमंत्री मोहन चरण माझी को साक्षात करते। अवसर में श्री अठावाले वरिष्ठ अधिकारी विभाग कार्यक्रम और योजना संपर्क समीक्षा करते। भुवनेश्वरस्थित राज्य अतिथि भवन ठारे एक सांबादिक सम्मेलन में जोगदे श्री अठावाले गत 12 वर्ष केन्द्र सरकार विभिन्न जनकल्याणकारी योजनार सफलता संपर्क आलोचना करते। देश में वर्तमान सुधा 58 कोटी अधिक लोक जनधन आकाउंट रही सेतिमध्यर ओडिशार 2,40,00,000 अधिक आकाउंट रही। प्रधानमंत्री मुद्रा योजन 10,00,000 टंकार ऋण सहायता को वर्तमान 30,00,000 टंका को वृद्धि कर योजना अधीन एपर्यंत 3,64,00,000 लोक सहायता प्रदान कर उज्ज्वला योजन ओडिशार 56,47,000 लोक उपकृत होती। तृतीय लिंगी सुरक्षा एवं सेमानको अधिकार प्रदान दिगरे सरकार एकाधिक निष्पत्ति ग्रहण करिसेंति। अनुसूचित जनजाति एवं जनजाति वर्गर छात्र छात्री संरक्षण और वृत्ति क्षेत्र में सरकार ने पदक्षेप उपरे केन्द्रमंत्री श्री अठावाले सूचना देथिले। विद्यालय पाठ्यपुस्तक त्रुटि प्रसंगे राज्य शिक्षा गवेषणा और प्रशिक्षण परिषद एससीईआरटी कार्यालय मुख्यमंत्री निर्देश में गठित तीन जणिया कमिटी तदंत आरंभ करिसेंति। कमिटी आज तदंत रिपोर्ट प्रदान करे यार आधार में परवर्ती कार्यानुष्ठान ग्रहण होना। कमिटी सदस्य तथा ओडिया भाषा साहित्य और संस्कृति विभाग सचिव विजय केतन उपाध्याय गणशिक्षा सचिव एन थिरुमाला नायक ओसेपा निर्देशिका अनन्या दास उपस्थित रही घटनार विभिन्न दिग उपर तर्जमा करुछन्ति। आपण माने आंचलिक संवाद सुनुछन्ति आकाशवाणी कटक केन्द्ररु। राज्यर महिलांक आर्थिक सशक्तिकरण और सेमानकु उद्योगी भाव गढ़ी तोलिबा दिगरे सरकार विभिन्न पदक्षेप ग्रहण करुछन्ति बोली उपमुख्यमंत्री प्रभाती परिडा कहिछन्ति। भुवनेश्वर मिशन शक्ति भवन ठारे आयोजित सुभद्रा शक्ति भिजन सम्मेलन में जोगदे उपमुख्यमंत्री 2,88,198 स्वयं सहायक गोष्ठी को 147 कोटी ऊर्ध टंकार सुध फेरस्त करिछन्ति। कार्यक्रम में मिशन शक्ति विभाग कमिशनर तथा शासन सचिव मानसी निम्बाल निर्देशिका डॉक्टर मोनिका प्रियदर्शिनी विभाग अधिकारी बैंक और सहयोगी संस्थार प्रतिनिधि एवं 30 जिले में जिलास्तरीय महासंघर कार्यनिर्वाही सदस्य और स्वयं सहायक गोष्ठी सदस्य माने उपस्थित थिले। पूर्वतन मुख्यमंत्री नवकृष्ण चौधरी श्राद्धवार्षिकी अवसर में आज राज्यवासी अम्लान स्मृति प्रति श्रद्धांजलि अर्पण करिसेंति। विधानसभा प्रांगण में थिबा तांको प्रतिमूर्ति में मुख्यमंत्री मोहन चरण माझी बाचस्पति सुरमा पाड़ी उपमुख्यमंत्री मंत्रिमंडल सदस्य एवं विधायक माने पुष्पमाल्य अर्पण कर श्रद्धांजलि ज्ञापन करिसेंति। राज्यपाल डॉ हरिबाबू कंभम पाटी नवकृष्ण चौधरी को श्रद्धांजलि ज्ञापन कर सत्य निष्ठा जनसेवा और आदर्श नेतृत्व पर सर्वदा स्मरणीय हो रहे। मुख्यमंत्री मोहन चरण माझी कहते राज्यर सर्वांगीन विकास पर उत्सर्गीकृत सेवा अतुलनीय ओडिशार प्रगति पर से सुदृढ़ भित्तिमि स्थापन कर सरल जीवन स्वच्छता और मूल्यबोधभित्तिक राजनैतिक जीवन समस्त प्रेरणार उत्स हो रही श्री माझी कहते। नुआदिल्ली में आसंता काली 36वां जातीय युव संसद प्रतियोगिता 2025-26 पुरस्कार वितरण समारोह अनुष्ठित हेबो। समारोह में संसद व्यापार राष्ट्रमंत्री अर्जुन राम मेघवाल जोगदे छात्र छात्री और विद्यालयगुड़ पुरस्कार बंटन करेंगे। संसदीय व्यापार मंत्रालय पक्ष प्रतियोगिता आयोजित होसुच्छ देशव्यापी केन्द्रीय विद्यालय संगठन 25 स्थान में 200 विद्यालय मध्य प्रतियोगिता अनुष्ठित होता। युववर्गों मध्य गणतांत्रिक चिंताधारा को प्रोत्साहन प्रदान करने यह कार्यक्रम अन्यतम उद्देश्य बोली मंत्रालय पक्षर कह। पुरी श्रीमंदिर में आज ज्येष्ठ शुक्ल दशमी तिथि महाप्रभु राजेन्द्र अभिषेक नीति।

0: हेलो, आकाशवाणी संबलपुर। हेलो अनुरोध कार्यक्रम।
1: हाँ मैडम नमस्कार।
0: नमस्कार आज्ञा, कुहंतु आपणकर परिचय प्रथमे दियंतु, केउठु कहउछन्ति कुहंतु।
1: मनोज कुमार पटेल कहुछि।
0: मनोज आज्ञा, आपणकु आम कार्यक्रम को स्वागत। प्रथमे कुहंतु आज कार्यक्रम रे केउ गीत शुणिबे?
1: आज्ञा बाजीर आखि जे तोर सामुका से कि शुणि देबे। आज्ञा
0: आज्ञा आज्ञा आज्ञा, गीत पसंद लागु। आज्ञा आकाशवाणी सम्बलपुर केन्द्र समस्ते ठीक अच्छे। आज्ञा धन्यवाद पचरावार लगी। आपण कहुन आज्ञा के निश्चय निश्चय। आज्ञा आपण माने आमर केन्द्र कार्यक्रम सुनून आपण भल पाइबा दोन, आमे निश्चय सबुदिन आपण मानकर लगी कार्यक्रम नहीं करी आसमु। आमर केन्द्र नु आपण कार्यक्रम सुनि पारबे। आउ आज्ञा आपणकर एल्डे वर्षा बुर्सी केन्ता हेछे?
1: परदिन वर्षा हेतिला आज्ञा, भल वर्षा हेतिला आमर साइड।
0: आज्ञा
1: आउ जहाबे पानी परिवार चली छे आज्ञा, आमर भेणी रो गार टाणु छे बे।
0: आज्ञा आज्ञा
1: आज्ञा, आउ मासे डेढ़ मास भितरे बाहरी जीवा। आज्ञा
0: आज्ञा आज्ञा, आपण चार्ज करी साइला परे केनु एटा बिक्री लागि आपण बाजार केनु खोजसन?
1: आज्ञा आमर भानी पाटना डेली मार्केट जैसी आज्ञा, आमर पाखे न पडुचे
0: କିନ୍ତୁ ଆମର ପେଟକେ ଖାଇବାର ଲାଗି ଯେନ୍ ଭାତ ଦରକାର ସେଥିଲାଗି ଆପଣ ଧାନ ଚାଷ କରୁଛନ୍, ସେଥିଲାଗି ଆପଣଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ। ଆଉ ଏଇ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ମାଧ୍ୟମ ଥି ଆପଣଙ୍କର ଅଞ୍ଚଳ ଥି କାଣା ସବୁ ଚାଷବାସ ହେସି ହେଟା ଆମର ଶ୍ରୋତା ମାନେ ଜାଣିଲେ। ଆପଣଙ୍କର ମନ ପସନ୍ଦର ଗୀତଟା ଶୁଣି ନଉନ
1: ଆଜ୍ଞା?
0: ନିଶ୍ଚୟ ନିଶ୍ଚୟ ଆଜ୍ଞା, କାହାକେ ସମର୍ପିତ କରିବେ କହୁନ? ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା, ଆପଣ ଯେନ୍ ଯେନ୍ ମାନଙ୍କୁ ଉଲ୍ଲେଖ କଲେ ସେମାନଙ୍କର ସାଙ୍ଗେ ଯେନ୍ ମାନଙ୍କୁ ପାସରୀ ଦେଇଛନ୍ ସେମାନଙ୍କୁ ବି ସାଙ୍ଗେ, ଆପଣ ବି ଆପଣଙ୍କର ଏ ମନପସନ୍ଦର ଗୀତ ଶୁଣି ନଉନ୍, ସାଙ୍ଗେ ମୁଇଁ ବି ଶୁଣୁଛେ। ଆମର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକେ ଫୋନ୍ କରିଥିବାରୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ। ଆଜ୍ଞା
1: ନମସ୍କାର।
0: ନମସ୍କାର ଆଜ୍ଞା।

0: हेलो, आकाशवाणी संबलपुर। हेलो, अनुरोध कार्यक्रम।
1: नमस्कार आज्ञा, मुन्ना आज्ञा, उपेन्द्र सुना चुपुटा धरन आज्ञा बरगर।
0: नमस्कार आज्ञा, आपण को आम कार्यक्रम को स्वागत। कौन तो प्रथमे आज कार्यक्रम रे क्यों गीत सुनिबे?
1: अच्छा सुनवा आज्ञा, इतनी दिखती कलकुल लगन गीत रो गया है। सुनवा आज्ञा
0: आज्ञा आज्ञा, आदिम विचार कथा चित्र रे गीत सुनबे। आज्ञा आज्ञा
1: आज्ञा आज्ञा आज्ञा,
0: ई गीत बहुत भल लागसी गायक मान कर लागी
1: कि आज्ञा भलपुरी फिल्म है पूरा मन के छिसी गाय गीत रा फिल्म दा आज्ञा जे देखितवा हे जानबा आज्ञा ते मस्त पडा गाय।
0: आज्ञा आज्ञा आज्ञा
1: आज्ञा,
0: आउ कहुन आज्ञा आपन कर अंचल थी आउ
1: वर्तमान आज्ञा हमर बरगढ़ जिला फुटी बरगढ़ गुटे गांड अछि कमगा।
0: आज्ञा
1: तेना गुटे शकुंतला बिहार कोइ बगे अछि तेना मोर झियर माने पछि फाइनल रे मु दागे कॉलेज जस्ट छालली आउ गेट के बाहरली कपुंडा लागला आज्ञा।
0: आज्ञा आज्ञा, जा हो आपण एते कार्य व्यस्तता मध्य रे भी हमर कार्यक्रम को कॉल करी चंती सेते पई आपण को धन्यवाद।
1: आज्ञा
0: आउ कोहन तो आपण कर अंचल रे पानी पा केंदा अछे?
1: पानी पा बोले आज्ञा बसा हो जे किंतु ओते बसा नै आवर आज्ञा, किंतु बहुत बहुत नै उठो जे लेकिन बसा भुरुर कर नै जेगा भागा मुरा बाडी नै बिबा आछी बसा उठी
0: गे। आज्ञा आज्ञा, हमको आहुरी अपेक्षा करबार के पड़बा। एतेटे खरा हिचे जेते बेले गरम हिचे सब वार्ड बेले टिके बुंदा बांधी दी
1: तो शांति नै मिली। जेन से आरो मासावर जेन पहुंचान माने सुपर एलर्जी हिचे बुझान एटा स्वभाव एटा प्रभाव आज्ञा दिया छौ सते बोले पहुंच नि सेरा
0: आज्ञा। पाणीपाक विभाग जेतेबेले परीक्षा निरीक्षा करी करी कहिचे निश्चित भावे सेति तो सत्यता अछे आज्ञा, किंतु आमे भी मानसिक स्तर थी निजे एंता प्रस्तुत रहमा जदि बेले असुविधा
1: ता आमे तो बहुत लगे बहुत असुविधा
0: प्रार्थना करमु कि निश्चित वर्षा हेउ कहि करी आशावादी हमा आज्ञा। आपनकर मन पसंद रो गाना हेंता हेले सुनिनु निश्चय निश्चय आज्ञा, कहाँ को समर्पित करबे कोन?
1: रविंद्र मेहर, शिवराम मेहर, मुरली मेहर, देवराज मेहर, शंकर मेहर, जसवंत पालिक, परेश पुरवा, तबरे हमर प्रजन प्रधान
0: आज्ञा,
1: किनारे बाघो आउ मनोज पटेल आउ हमर सुमल साहू आउ तो सर हमर भाई तकर नाम रहला
0: किछ कथा नहीं आज्ञा।

0: हेलो, आकाशवाणी संबलपुर। हेलो अनुरोध कार्यक्रम।
1: हेलो
0: नमस्कार, किए कहते,
1: अनुराध।
0: परिचय दियंतु।
1: हेलो मैम, नमस्कार। गुड मॉर्निंग मैम, सुबह सकाळ मैम। दिस इज मामा मिशन, आई एम फ्रॉम भुवनेश्वर।
0: ओके, भुवनेश्वर रहंती। आज कार्यक्रम,
1: मैम
0: हाँ, आम कार्यक्रम को फोन करथिबारु आपनकु अनेक अनेक शुभेच्छा एवं स्वागत। कहंतु कार्यक्रम
1: थैंक
0: रे
1: यू।
0: आज क्यों गीत शुणिबे?
1: हाँ मैम, आप प्रथम थर कथा हूँ, आप मतलब सामिल कर बहुत बहुत वेलकम। एंड गोटे छोट लाइन टे कहि गीत कह ठीक अच्छे।
0: हाँ कुहंतु।
1: एवं तो आम सब रज सेलिब्रेट कले, सब सरला एंड भल लगे, योगा डे भी गला, सब भल लगला। एंड संबलपुर भी मो कल लग जा बहुत भल लगुच। तो मोर लाइन कह चाहिए, सपन में आसी मो मन में बसी भल पाइबा को कहलु, सपन में आसी मो मन में बसी भल पाइबा को कहलु, କାହିଁକି ଖେଳିଲୁ ଏମିତିକା ଖେଳ, କିଏ ବା ଯଶ ରଖିଲୁ। ହ୍ୟାଲୋ ମ୍ୟାମ୍,
0: ହଁ, ଆମେ ଆପଣଙ୍କର କବିତା ଦୁଇ ପଦ ଶୁଣିଛୁ। ଆପଣ କହିବେ ପ୍ରଥମେ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଆଜି କେଉଁ ଗୀତ ଶୁଣିବେ?
1: ଓକେ ମ୍ୟାମ୍, ଏଇଟା ଶୁଣେଇ ଦେବେ ଆମ ଫ୍ୟାମିଲିକୁ ଆଣ୍ଡ ଆପଣଙ୍କୁ। ମାତୃଶକ୍ତି ମୁଭିର ମମତା ଆଖିରୁ ଲୁହ ଦେଖ, ସେଇଟା ମୁଁ ଶୁଣେଇବି।
0: ଆଚ୍ଛା, ଏଇ ଗୀତଟି କାହିଁକି ଭଲ ଲାଗେ?
1: ମ୍ୟାମ୍ ଏଇଟା ମାଙ୍କ ଉପରେ ଅଛି ଆଣ୍ଡ ଫିଲ୍ମଟା ବି ବହୁତ ଭଲ, ବହୁତ ଇମୋସନାଲ ଫିଲ୍ମଟା। एंड गोटे तरह से छुआ टाक के रक्षा कर, मानने से गोटे अच्छी कुकुर, तो फैमिली ऊपर आधार पूरा, से मतलब गीत बहुत भल लगे।
0: अच्छा,
1: हाथ अच्छी
0: आउ कौन करु चंती एबे?
1: मैम मु शायरी लिखे, कविता लिखे एंड गीत भी गाए एंड मम्मी को टिके टिके हेल्प करे एंड सोसाइटी को भल भल मेसेज दिए। तापर मु स्टूडेंट बीबीए पढ़ी प्लस टू पर, तापर एमबीए करी एबे।
0: ତାହେଲେ ଛାତ୍ରୀ ନା, ପାଠ ପଢୁଛନ୍ତି, କବିତା ଲେଖନ୍ତି। କବିତା ପ୍ରଥମରୁ ତ ଦୁଇ ପଦ ଶୁଣେଇଲେ, ହେଲା, ଠିକ ଅଛି। ଆପଣଙ୍କର ମନପସନ୍ଦ ଗୀତଟି ଶୁଣି ନିଅନ୍ତୁ। ତାହେଲେ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ଫୋନ କରିଥିବାରୁ ଆମକୁ ବି ଭଲ ଲାଗିଲା। ଏତେ ସବୁ ଭଲ ପାଇବା ଆମ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ଦେଉଛନ୍ତି ଏବଂ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ମାଧ୍ୟମରେ ଆମେ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ଭାବରେ ଆପଣମାନଙ୍କ ସହିତ କଥାବାର୍ତ୍ତା ହୋଇପାରୁଛୁ, ଆପଣମାନଙ୍କର ମନର କଥା ଜାଣିପାରୁଛୁ, ଭାବନା ଅଭିବ୍ୟକ୍ତ କରିପାରୁଛୁ। ସେଥିପାଇଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ। ହେଲା, ନିଜର ମନପସନ୍ଦ ଗୀତଟି ନିଜ ପରିବାର ସହିତ ଶୁଣି ନିଅ। ଆମ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ଫୋନ୍ କରିଥିବାରୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ।
1: ନମସ୍କାର ମ୍ୟାମ୍।
0: ନମସ୍କାର।

0: हेलो,
1: आकाशवाणी संबलपुर। हेलो, अनुरोध कार्यक्रम।
0: आज्ञा जय सीताराम। आज्ञा जय सीताराम।
1: नमस्कार आज्ञा, परिचय दिउन।
0: जय सीताराम। आज्ञा रविंद्रनाथ मेहर मोहल्ला कोटा बेडन ब्लॉक बरगढ़ जिला नु कहू जा। आज्ञा
1: रविंद्र आज्ञा, अपन को कार्यक्रम के स्वागत। कहू न इसका कार्यक्रम थे केन गीत सुनबे?
0: आज्ञा आदिम टीचर रो के सुनमा लाल जरोज रो अल्पागार मन के नेति टानी आइटा ब्याग रनो छे गुटे बिहारी
1: निश्चित भावे आपन ना उल्लेख नाई कोले भी अमर श्रोता माने बुझुचन सेमान कर संगे आपन भी आपन कर मन पसंद रो गीतटा सुनी नउन। कार्यक्रम के फोन करी थिबानु आपन को धन्यवाद। आज्ञा
0: आज्ञा जय सीताराम। आज्ञा जय सीताराम।
1: नमस्कार आज्ञा।

0: देखो देखो प्रभु पाप कर्म जोगू होइलाणी अपकीर्ति।
1: देखो देखो प्रभु पाप कर्म जोगू होइलाणी अपकीर्ति।
0: ए पिंड ब्रह्मांड जे मनते रहिब,
1: ए पिंड ब्रह्मांड जे मनते रहिब,
0: भारा छेदी कर

0: गुरु ब्रह्म महामहिमा
1: उल्लेख
0: शून्य ब्रह्म।
2: लोकगीतर कार्यक्रम एठी शेष करुचु। आज एथिरे खंजणी भजन शुणुथिले, परिवेशन कले संकीर्तन्य बाग एवं साथीमाने। साथीमाने हेले क्षीरोद महानंद, श्रीनिवास महानंद, त्रिलोचन महानंद एवं कयरु महानंद। श्रोतामाने कार्यक्रम शुणुचन्ति आकाशवाणी सम्बलपुर केन्द्ररु। प्रचार करुचु जुववाणी कार्यक्रम।

0: नमस्कार शुभ संध्या जीवबाणी संकल्प कार्यक्रम को आपण मानक स्वागत जनाऊँगी। उपस्थापन मुंपी सरिता मिश्र। श्रोता बंधु आजिकल गोटे कथा आपण मैंने निश्चय लक्ष्य करेंगे, आज जदि आम कि नुआ शिखा को इच्छा हुए तेज आम प्रथम कौन करू, बही खोजु ना मोबाइल टाक हाथ को नौ? बोध हुए अधिकांश लोकों उत्तर मोबाइल हम कहीं कहले कहीं समय सहित शिखबार ढंग बदली आईन सह खोली अनेक नुआ संभावनार द्वार। आज घरे बसी विश्वर जेकोसी कोण रू शिखा संभव होनलाइन रे नुआ कोर्स करुँचा दक्षता शिखुं तो आउ कहीं से ही दक्षता को नहीं निज कैरियर गढ़ुं। तेणु डिजिटल शिक्षा केवल पाठपढ़ सीमित न रही भविष्य पर नुआ रास्ता देखा। तेबे एही डिजिटल शिक्षा मध्यम आम किपर निजर कैरियर गढ़ी पार चलतु से विषय आहरी अधिक जानवा आज आलोचन आलोचनाटी कर आसित महापात्र।
1: शिक्षा हेउछि मनीष जीवनर मूल आधार। शिक्षा बिना एक समाजर उन्नति कल्पना करा जाय पारे नाही। समय सहित शिक्षा प्रणाली रे अनेक परिवर्तन आसीछि। एक समय थिला जेतेबेले छात्र छात्री माने गुरुकुल रे रही शिक्षा ग्रहण करूथिले, परे विद्यालय ओ महाविद्यालय रो प्रचलन बढ़िला। वर्तमान विज्ञान ओ प्रजुक्तिर अग्रगति सहित शिक्षा क्षेत्र रे आसीछि एक नूतन विप्लव, जहाँकु आमे डिजिटल शिक्षा बोली कहूँ। डिजिटल शिक्षार अर्थ हेउछि इंटरनेट, कंप्यूटर, मोबाइल फोन, टैबलेट, स्मार्टबोर्ड एवं विभिन्न डिजिटल माध्यम व्यवहार करी शिक्षा ग्रहण करिबा। एहा शिक्षा को केवल श्रेणीगृह भितर सीमित रखे नाही, बरं घरे यात्रा समय रे किंबा पृथ्वीर कोनोसी स्थान रे बसी शिक्षा लाभ करिवार सुजोग देउछि। विशेष करी COVID-19 महामारी समय रे डिजिटल शिक्षार गुरुत्व आमे समस्ते अनुभव करिछु। विद्यालय ओ कॉलेज बंद थिबा समय रे ऑनलाइन क्लासेस ही छात्र छात्री को पाई एकमात्र माध्यम थिला। एहा प्रमाण करि देला जे डिजिटल शिक्षा आधुनिक युगर एक अपरिहार्य अंश। डिजिटल शिक्षार अनेक सुविधा रहिछि। प्रथमतः एहा शिक्षा को सहज ओ सुलभ करिछि। जणे छात्र घरे बसी देश विदेश श्रेष्ठ शिक्षक मानंक ठारु पाठ पढ़ी पारुछि। द्वितीयतः एहा समयर संचय करे। तृतीयतः छात्र छात्री माने कौनसी पाठ को बारंबार देखि ओ सुनी बुझी पारंती। चतुर्थतः चित्र, वीडियो, एनिमेशन ओ ग्राफिक्स माध्यम रे शिक्षा अधिक आकर्षणीय लगे। एहा द्वारा कठिन विषय मध्य सहजरे बुझी हुए। डिजिटल शिक्षा केवल पाठपढ़ा सीमित नहीं, एहा छात्र छात्री मध्यरे आत्मविश्वास, सृजनशीलता ओ नूतन चिंताधारार विकास करिथे। आज अनेक छात्र ऑनलाइन कोर्स, वेबिनार ओ वर्चुअल वर्कशॉप माध्यम रे निज ज्ञान को बढ़ाउछंती। एहा समानंकु विश्व सहित जोड़ी रखुछि। भारत सरकार मध्य डिजिटल शिक्षार विकास पई अनेक पदक्षेप नैछंती। दीक्षा पोर्टल, स्वयं ई पाठशाला, पीएम ई विद्या परि विभिन्न योजना छात्र छात्री को गुणात्मक शिक्षा प्रदान करुछि। एही सबु उद्यम द्वारा शिक्षार डिजिटलीकरण अधिक द्रुत होइछि। तथापि डिजिटल शिक्षार किछि समस्या मध्य रहिछि। ग्रामांचल रे अनेक स्थान रे इंटरनेट सुविधा एबे मध्य पर्याप्त नुहे। समस्त परिवार पाखरे स्मार्टफोन किंबा कंप्यूटर नथाय। अधिक समय स्क्रीन सामनारे बसिबा द्वारा आखि, मुंड, स्वास्थ्य उपरे कुप्रभाव पड़िथाय। केबे केबे छात्र छात्री माने पढ़ा अपेक्षा सोशल मीडिया ओ खेल अधिक समय बीतछंती। तेणु डिजिटल शिक्षा सहित आत्मनियंत्रण ओ श्रृंखला मध्य अति आवश्यकता। आमे सबुबेले मने रखिबा उचित जे डिजिटल शिक्षा पारंपरिक शिक्षार विकल्प नुहे, बरं एहा एहार परिपक्व शिक्षकंक मार्गदर्शन विद्यालय

0: ଶ୍ରୋତାମାନେ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଶୁଣୁଛନ୍ତି ଆକାଶବାଣୀ ସମ୍ବଲପୁର କେନ୍ଦ୍ରରୁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟ ସନ୍ଧ୍ୟା 6ଟା ହେବାକୁ ଯାଉଛି। ହିନ୍ଦୀରେ ସମ୍ବାଦ ଶୁଣନ୍ତୁ, ରିଲେ କରୁଛୁ ଆକାଶବାଣୀ ଦିଲ୍ଲୀ କେନ୍ଦ୍ରରୁ କିଛି ସମୟ ମଧ୍ୟରେ।
1: ନମସ୍କାର, ଆକାଶବାଣୀ ସମାଚାର କେ ସାଥ ମେ ପ୍ରିୟଙ୍କା ଅରୋଡା। भारत ने संयुक्त राष्ट्र में पाकिस्तान द्वारा कश्मीर मुद्दा उठाने पर कड़ी आपत्ति व्यक्त की है। पाकिस्तान पर संयुक्त राष्ट्र मंच का राजनीतिकरण करने का आरोप लगाते हुए भारत ने कहा कि सह अध्यक्ष के रूप में निष्पक्ष रहने के बजाय पाकिस्तान ने पद का दुरुपयोग किया है। संयुक्त राष्ट्र में भारत के स्थायी प्रतिनिधि पी हरीश ने पाकिस्तान के स्थायी प्रतिनिधि आसिम इफ्तिखार अहमद की टिप्पणियों के जवाब में जम्मू कश्मीर पर भारत का रुख दोहराया।
2: मैं पाकिस्तानी पक्ष की टिप्पणियों का उल्लेख करता हूं। यह हैरान कर देने वाला है कि ऐसे मंच पर जहां राजनीतिक मुद्दों पर संतुलित और निष्पक्ष चर्चा की उम्मीद की जाती है, ऐसी बातें कही गईं। मैं दोहराना चाहता हूं कि जम्मू कश्मीर पूर्ण रूप से भारत का घरेलू मामला है।
3: इट हैज ऑलवेज बीन इज एंड विल रिमेन सो।
1: ईरान के तेहरान में स्थित

0: भारतीय दूतावास ने सुरक्षा स्थिति में सुधार के बावजूद भारतीय नागरिकों को जारी नए परामर्श में अगली सूचना तक सभी गैर जरूरी यात्राओं से बचने को कहा है। बहुत आवश्यक होने पर ईरान यात्रा करने वालों को अत्यधिक सावधानी और सतर्कता बरतने तथा स्थिति पर लगातार नजर रखने की सलाह दी गई है। स्थानीय अधिकारियों के निर्देशों का पालन करने को भी कहा गया है। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने आज अमरीकी व्यापार प्रतिनिधि राजदूत जैमिसिन ग्री और उनके प्रतिनिधिमंडल के साथ बैठकें की। श्री गोयल ने भारत अमरीकी व्यापार वार्ता की प्रगति की समीक्षा की और दोनों देशों के बीच आर्थिक साझेदारी को और मजबूत करने के अवसरों पर चर्चा की। उन्होंने वार्ता को आगे बढ़ाने के निरंतर प्रयासों की सराहना की। भारत और संयुक्त अरब अमीरात ने आज नई दिल्ली में सामरिक रक्षा साझेदारी ढांचे के अंतर्गत रक्षा सहयोग को आगे बढ़ाने के लिए एक बैठक आयोजित की। बैठक की सह अध्यक्षता अंतर्राष्ट्रीय सहयोग के संयुक्त सचिव अमिताभ प्रसाद और संयुक्त अरब अमीरात के ब्रिगेडियर स्टाफ जमाल इब्राहिम मोहम्मद इब्राहिम अलमारजूकी ने की। चर्चा का मुख्य विषय रक्षा उद्योग सहयोग का विस्तार करना, नवाचार को बढ़ावा देना, विशिष्ट तकनीकों का लाभ उठाना और समुद्री सुरक्षा को मजबूत करना था। गृह मंत्री अमित शाह शुक्रवार को नई दिल्ली में नार्को कोऑर्डिनेशन सेंटर की 10वीं शीर्ष स्तरीय बैठक की अध्यक्षता करेंगे। स्वापक नियंत्रण ब्यूरो द्वारा आयोजित इस बैठक में केंद्रीय मंत्रालयों, राज्य सरकारों और मादक पदार्थों से संबंधित कानून प्रवर्तन एजेंसियों के प्रतिनिधि मादक पदार्थों की तस्करी और दुरुपयोग से निपटने के प्रयासों की समीक्षा करने के लिए एक साथ आएंगे। केंद्र सरकार ने वित्त वर्ष 2026-27 के लिए प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अंतर्गत त्रिपुरा में 96 सड़क परियोजनाओं के निर्माण के लिए 211 करोड़ रुपए से अधिक की राशि स्वीकृत की है। इस परियोजना से राज्य में 160 किलोमीटर से अधिक लंबी सड़कों का निर्माण होगा। इन परियोजनाओं से राज्य की 96 बस्तियों को पहली बार हर मौसम में सुगम सड़क संपर्क प्राप्त होगा। राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण ने देशभर के राष्ट्रीय राजमार्गों पर अवैध पार्किंग और अतिक्रमण हटाने के लिए अभियान तेज कर दिया है। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने बताया है कि ये कार्रवाई सर्वोच्च न्यायालय के निर्देशानुसार की जा रही है। इसका उद्देश्य राष्ट्रीय राजमार्गों को अधिक सुरक्षित, सुगम और यात्रियों के लिए सुविधाजनक बनाना है। प्रवर्तन निदेशालय ने बेंगलुरु और मुंबई में राजेश एक्सपोर्ट्स लिमिटेड से जुड़े 9 ठिकानों पर छापेमारी की है। ये कार्रवाई कल शुरू की गई। ये जांच राजेश एक्सपोर्ट्स लिमिटेड और उससे जुड़े लोगों के खिलाफ विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम के कथित उल्लंघन के मामले में की जा रही है। पश्चिम बंगाल में कोलकाता के तारा तला में आज निर्माणाधीन गोदाम ढहने से 3 लोगों की मौत हो गई और 5 लोग घायल हो गए। घायलों का SSKM अस्पताल में इलाज चल रहा है। मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी स्थिति का जायजा लेने के लिए दुर्घटना स्थल पर हैं। राष्ट्रीय आपदा मोचन बल, पुलिस, अग्निशमन और आपातकालीन सेवाएं तथा स्थानीय लोग बचाव कार्य में जुटे हुए हैं। US ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट के महिला डबल्स में त्रिशा जॉली और गायत्री गोपीचंद ने प्री क्वार्टर फाइनल में जगह बना ली है। भारतीय जोड़ी ने स्पेन की पाउला लोपेज और लूसिया रॉड्रिक्स को हराया। मौसम विभाग ने कोंकण और गोवा में आज मूसलाधार वर्षा का रेड अलर्ट जारी किया है। तटीय कर्नाटक और मध्य महाराष्ट्र में भी अगले 2 दिन तक इसी तरह का मौसम रह सकता है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: आकाशवाणी संबलपुर सुनंदु संबलपुरी मुख्य संवाद।
2: आकाशवाणी संबलपुर मुख्य खबर संगे मुई बंदिता मिश्र। जम्मू काश्मीर भारत अविच्छेद्य अंग आउ ई केन्द्रशासित अंचल परिस्थिति भारत निजर आभ्यंतरीण विषय बोली मिलित जातिसंघ अधिवेशन स्पष्ट कला। भारत ভারত দক্ষিণ কোরিয়া সাম্প্রতিক বৈশ্বিক পরিবেশ ভিতরে দ্বিপাক্ষিক সম্পর্ককে অতকা মজবুত করবার নেইকি গুরুত্ব দেলে বৈদেশিক ব্যাপার মন্ত্রী। দেশের ভবিষ্যৎ বড়াবার লাগি ডিজিটাইজেসনকে গোটে আধার হিসাবে গ্রহণ করবারকে ইস্পাত শিল্পক্ষেত্রকে অনুরোধ কলে ভারী শিল্পমন্ত্রী। পাসপোর্ট আইন প্রণয়নকে সুর্তা করবার উদ্দেশ্যে আজ পালিত হচ্ছে বিশ্ব পাসপোর্ট সেবা দিবস। কেন্দ্রীয় বিদ্যালয়মানকু নেইকরি আইবাকাল নয়াদিল্লিঠানে মূল হেবা 36তম জাতীয় যুব সংসদ প্রতিযোগিতা 2025-26র পুরস্কার বণ্টন সমারোহ। আইবা মাসর 5 তারিখ বাহারবা চিঠা ভোটর তালিকা, জুলাই 5 নু অগস্ট 4 তারিখ ভিতরে দাখল হইপারবা আপত্তি অভিযোগ বলি সূচনা দেলে মুখ্য নির্বাচন অধিকারী।

0: आयबा 2028 मसीहा अगस्ट मास 31 तारिख तक टीईटी पास करवाके रही विद्यालय और गणशिक्षा विभाग निर्देश। सुवर्णपुर जिला न उद्यमी ओडिशा एमएसएमई प्रदर्शनी कार्यक्रम आयबा मास 27 तारिख नु 1 तारिख तक हेबा अनुष्ठित। आयबा 28 तारिख आकाशवाणी मन की बात कार्यक्रम जरिए देश और दुनिया सारा लोकों संगे भाव विनिमय करबे प्रधानमंत्री। देवगढ़ जिला ने आज अनुष्ठित हेचे निशामुक्त भारत अभियान विकसित भारत परिचय संपर्कित सचेतनता कर्मशाला। समय सीमाने प्रकल्प समाप्ति उपरे नुआपड़ा जिला मृत्तिका संरक्षण और जल विभाजिका उन्नयन विभाग मासिक समीक्षा बैठक आज जिलापाल अध्यक्षता जिला सम्मिलनी कक्ष नहला अनुष्ठित। फिफा विश्वकप फुटबल प्रतियोगितार ग्रुप खेप मैच थी कंगोर 1-0 के गोल थी हरेकरी कोलंबिया पहुंचला ग्रुप 32 पर्याय के। इंग्लैंड गस्त लगी हॉकी इंडिया घोषणा कला 14 जनिया जूनियर महिला दल आबा मास 5-14 तारीख तक 7 मैच अनुष्ठित हेबा बोली थीर हेला कार्यसूची। एचनी मुख्य खबर इन शेष हेला इतार उत्तर मुख्य खबर सुनी परबे राती 8 बजे।
1: सुनिले संबलपुरी मुख्य संवाद। आकाशवाणी संबलपुर शुणन्तु चलित अधिवेशनरे प्रचारित हेबाकु थिबा कार्यक्रम संपर्करे सूचना। आज संध्या 6:10 ओडिया लघु संगीत 6:30 उज्ज्वल आम देश रिले करिबो आकाशवाणी कटक केन्द्ररु। संबलपुरी आंचलिक संवाद राति 7:02 7:30 कृषि संसार कार्यक्रम शुणिबे चाषीक सहित साक्षात्कार सुशांत नायकों सहित साक्षात्कार। संबलपुरी गीत राति 8:02 कंठशिल्पी हेले वीरेन्द्र नाथ नाग प्रतिभाराणी भू एवं संतोष कुमार मिश्र। ओडिया भक्ति गीत राति 8:15 8:30 शास्त्रीय संगीतर कार्यक्रम में कंठ संगीत शुणिबे परिवेषण करिबे उस्ताद बिलायत हुसैन खान। राति 9:16 स्पॉटलाइट कार्यक्रम रिले करिबे आकाशवाणी दिल्ली। 9:30 शुणिपारिबे संबलपुरी नाटक बा रचना अशोक कुमार बहिदार निर्देशना सुब्रता बहिदार परिवेषण करिसेंती अभर्णगोड़ा नाट्य संसद पदमपुर कलाकार माने। राति 10:30 ओडिया लघु संगीतर कार्यक्रम यही चलित अधिवेशन प्रचारित होगा कार्यक्रम संपर्क सूचना।

भूतानि पर्जन्यात् अन्न संभवः यज्ञात् भवति पर्जन्यो यज्ञः कर्म समुद्भवः। अर्थात यज्ञरु वर्षा हुए, वर्षारु अन्न हुए, आउ अन्न खाइकी एहि सृष्टिर सबु प्राणी बंची रुहन्ति। अर्थात अन्नरु ही ए सृष्टि चालीची। त एहि यज्ञ केवल अग्निरे दिया जाउथिबा आहुति नुहे। यज्ञ हेउछि निजर स्वार्थकु ध्यान न देई सामूहिक मंगल पई करा जाउथिबा प्रत्येक कर्म। तेणु निस्वार्थ पर भावरे परिवेश को सफा रखिबा पई सामूहिक मंगल पई आमे जदि किछि करिबा ताहाले ताहा यज्ञ सदृश पवित्र काम हेबो। आमे सबुबेले मन रखिबा उचित जे आगामी पीढ़ी ही आमर भविष्य आउ आमे सेमानक पई सुंदर पृथ्वीटिए छाड़ी जाई परिबा नहीं। एहा ता आमर कर्तव्य। जदि आमे एभली न करि परिबा ताहाले आमे निश्चिंत भावरे पापी हेबा आउ आमर ए मनुष्य जन्म व्यर्थ जीव। तेणु आज आमे समस्ते मिसी स्वच्छ परिवेश ओ सुंदर भविष्यत टिए गढ़िबार संकल्प नेबा।

मल्टी एजेंसी सामुद्रिक सुरक्षा ग्रुप नीति बैठक कले उद्घाटन। केन्द्र सरकार जनकल्याणकारी योजना मान सफलता बादे तथ्य रखले केन्द्रमंत्री रामदास अठावाले। स्वयं सहायक गोष्ठी मान 147 कोटी नु अधिक टंका सुध फिराले राज्य सरकार। और भुवनेश्वर कलिंग स्टेडियम न आस्थानु मूल हेला अंतराज्य वरिष्ठ दौड़कूद प्रतियोगिता। आजिर आंचलिक खबर इन शेष हेला। जुहार।

0: नानी जुहार
1: जुहार जुहार ये बुआ बाबू रे तोते देखले उटे कथाडे पचरामी बोलथिले
0: क्या नानी
1: बने देने तू आइछु बोल हेडा आज्ञा माने जे नै आसीथिले के किन के हेडा जाइथिले बो
0: का करू नानी गुहड़े लोग तो से ब्रिज बनाथले हनो देखुथिले आजका
1: होए हेटा तुमी देखुथिले।

0: सुनलु त
1: बने कि त्रे सुनालो नानी
0: जाले भी माँ ना टने ले मोटा पोछाने लगसी के
1: हेटा तो मुझे तो आगरू नहीं कहली वो ठोकी गए बार गीत पर जने सुन ले तर काय हो जाए
0: होए जार गुटे को था जिन चिंगरी कोर्मी ना बोलतुलु के हंता माँ ना नबू आरु जिन चाष्टा भी आरम

0: ଶାସ୍ତ୍ରୀୟ ସଙ୍ଗୀତର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଉସ୍ତାଦ ବିଲାୟତ ହୁସେନ ଖାଁଙ୍କ କଣ୍ଠରେ ଶୁଣିଲେ ଏକ ମୌଳିକ ହିନ୍ଦୁସ୍ତାନୀ ରାଗ କାଫି ଆଧାରିତ ଏକ ପାରମ୍ପରିକ ଅର୍ଥଶାସ୍ତ୍ରୀୟ ସଙ୍ଗୀତ ରଚନା ହୋରି। ଗାୟନରେ ସହଯୋଗିତା କରିଥିଲେ ଉସ୍ତାଦ ୟୁନୁସ ହୁସେନ ଖାଁ। ଆକାଶବାଣୀ ସମ୍ବଲପୁର ପରବର୍ତ୍ତୀ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଶୁଣନ୍ତୁ। ରିଲେ କରୁଛୁ ଆକାଶବାଣୀ ଦିଲ୍ଲୀ କେନ୍ଦ୍ରରୁ।
1: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार संध्या के साथ मैं प्रियंका अरोड़ा। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने अमेरिका के व्यापार प्रतिनिधि दूत जेमिसन ग्रीर के साथ व्यापार वार्ता की प्रगति की समीक्षा की। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने दक्षिण कोरिया के विदेश मंत्री चो ह्यून से सोल में मुलाकात की। वैश्विक चुनौतियों के बीच भारत दक्षिण कोरिया संबंधों को मजबूत करने का आह्वान किया। ओमान ने होर्मुज जलडमरू मध्य से एक अस्थायी समुद्री गलियारा खोलने की घोषणा की। पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता में निर्माणाधीन गोदाम गिरने से 3 लोगों की मौत, बचाव अभियान जारी। अरुणाचल प्रदेश में मूसलाधार वर्षा से अचानक बाढ़ आई, असम में चेतावनी जारी की गई। और फीफा फुटबॉल विश्व कप में कनाडा आज रात स्विट्जरलैंड से खेलेगा। अब समाचार विस्तार से। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने आज अमरीकी व्यापार प्रतिनिधि दूत जेमिसन ग्रीर और उनके प्रतिनिधिमंडल के साथ नई दिल्ली में बैठकें की। श्री गोयल ने भारत अमरीकी व्यापार वार्ता की प्रगति की समीक्षा की और दोनों देशों के बीच आर्थिक साझेदारी को और मजबूत करने के अवसरों की खोज की। उन्होंने राजदूत ग्रीर के नेतृत्व और दोनों पक्षों के रचनात्मक तथा प्रगतिशील तरीके से वार्ता को आगे बढ़ाने के निरंतर प्रयासों की भी सराहना की। भारत और संयुक्त अरब अमीरात ने आज नई दिल्ली में सामरिक रक्षा साझेदारी ढांचे के अंतर्गत रक्षा सहयोग को आगे बढ़ाने के लिए एक बैठक आयोजित की। बैठक की सह अध्यक्षता अंतर्राष्ट्रीय सहयोग के संयुक्त सचिव अमिताभ प्रसाद और संयुक्त अरब अमीरात के ब्रिगेडियर स्टाफ जमाल इब्राहिम मोहम्मद इब्राहिम अलमारजूकी ने की। चर्चा का मुख्य विषय रक्षा उद्योग सहयोग का विस्तार करना, नवाचार को बढ़ावा देना, विशिष्ट तकनीकों का लाभ उठाना और समुद्री सुरक्षा को मजबूत करना था। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने चुनौतीपूर्ण वैश्विक परिदृश्य के बीच भारत दक्षिण कोरिया संबंधों को और मजबूत करने की आवश्यकता पर बल दिया है। सोल में दक्षिण कोरिया के विदेश मंत्री चो ह्यून के साथ बैठक में डॉ. जयशंकर ने कहा कि वर्तमान अंतर्राष्ट्रीय परिदृश्य में विश्वसनीय साझेदारों के बीच सहयोग पहले से कहीं अधिक महत्वपूर्ण हो गया है।
2: It is really our responsibility.
3: इस साझेदारी को आगे बढ़ाना हमारी जिम्मेदारी है। इसमें सरकार के अलग अलग विभाग और देश की अर्थव्यवस्था के विभिन्न पहलू शामिल हैं, जिनके बीच तालमेल बिठाना बहुत आवश्यक है। मैं कहूँगा कि हमें भविष्य को ध्यान में रखते हुए एक आधुनिक साझेदारी की ओर बढ़ना चाहिए।
2: रिलेशनशिप इन अ मोर डिफिकल्ट वर्ल्ड।
1: ईरान में मौजूद भारतीय दूतावास ने भारतीय नागरिकों के लिए यात्रा परामर्श जारी किया है। दूतावास ने कहा है कि अगली सूचना तक भारतीय नागरिक जब तक आवश्यक ना हो

0: ईरान की यात्रा न करें। एक रिपोर्ट।
1: जो भारतीय नागरिक वर्तमान में ईरान में रह रहे हैं या किसी आवश्यक कारण से वहां यात्रा करने जा रहे हैं, उन्हें विशेष सतर्कता बरतने की सलाह दी गई है। दूतावास ने भारतीय नागरिकों से कहा है कि वे अपने आसपास की स्थिति पर लगातार नजर रखें और स्थानीय प्रशासन द्वारा जारी निर्देशों का पालन करें। दूतावास ने ईरान में मौजूद सभी भारतीय नागरिकों और वहां पहुंचने वाले लोगों से जल्द से जल्द अपना विवरण भारतीय दूतावास में पंजीकृत कराने की अपील की है। भारतीय नागरिकों को दूतावास की आधिकारिक वेबसाइट और सोशल मीडिया मंचों पर जारी होने वाले अपडेट तथा सलाह पर नियमित रूप से नजर रखने की भी सलाह दी गई है। विष्णु की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से आनंद पाठक।
0: इस बीच ओमान ने होर्मुज जलडमरू मध्य से एक अस्थायी समुद्री गलियारा खोलने की घोषणा की है। ये वाणिज्यिक जलमार्ग को बहाल करने और खाड़ी में फंसे हजारों नाविकों के संकट को कम करने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है। ओमान सरकार ने कहा है कि ये पहल संयुक्त राष्ट्र के अंतर्राष्ट्रीय समुद्री संगठन के समन्वय से की गई है। इससे क्षेत्रीय संघर्ष से जुड़ी महीनों के व्यवधान के बाद जलमार्ग से जहाजों की सुरक्षित आवाजाही को सुगम बनाया जा सकेगा। संगठन के अनुसार क्षेत्र में 11,000 से अधिक नाविक फंसे हुए हैं। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ने आज नई दिल्ली में वीआईपी कल्चर इन इंडिया, पावर, प्रिविलेज एंड डिस्टेंस फ्रॉम डेमोक्रेसी नामक पुस्तक का विमोचन किया। उपराष्ट्रपति ने कहा कि ये पुस्तक सत्ता संस्थानों और लोगों के बीच मौजूद दूरी को जन केंद्रित शासन के माध्यम से इस दूरी को कम करने की आवश्यकता पर बल देती है। उपराष्ट्रपति ने कहा कि ये पुस्तक दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र के रूप में भारत की पहचान का उल्लेख करती है।
2: That Bharat is the world's largest democracy and is also called the mother of democracy. Our constitution envisions a society based on justice, equality, liberty and fraternity.
0: उपराष्ट्रपति ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का उदाहरण देते हुए कहा कि प्रधानमंत्री ने नीट परीक्षा देने वाले छात्रों को यातायात असुविधा से बचाने के लिए हवाई अड्डे से अपनी उड़ान लगभग 45 मिनट तक विलंबित की थी। रेल राज्य मंत्री रवनीत सिंह ने आज पंजाब के जालंधर में दो महत्वपूर्ण रोड ओवरब्रिज आरओबी परियोजनाओं की आधारशिला रखी। उन्होंने बताया कि जालंधर शहर जालंधर कैंट खंड पर गुरु नानकपुरा आरओबी का निर्माण 48,95,00,000 रुपए की लागत से किया जाएगा, जबकि दूसरा बस स्टैंड गढ़ा रोड आरओबी 63,98,00,000 रुपए की लागत से बनेगा। दोनों परियोजनाओं के लिए वित्तीय सहायता रेलवे देगी। गृह मंत्री अमित शाह शुक्रवार को नई दिल्ली में नार्को कोऑर्डिनेशन सेंटर की 10वीं शीर्ष स्तरीय बैठक की अध्यक्षता करेंगे। स्वापक नियंत्रण ब्यूरो द्वारा आयोजित इस बैठक में केंद्रीय मंत्रालय, राज्य सरकारें और मादक पदार्थों से संबंधित कानून प्रवर्तन एजेंसियों के प्रतिनिधि मादक पदार्थों की तस्करी और दुरुपयोग से निपटने के प्रयासों की समीक्षा करेंगे। भारत की अध्यक्षता में ब्रिक्स अंतरिक्ष एजेंसियों के प्रमुखों की 2026 की बैठक आज बेंगलुरु में संपन्न हुई। विज्ञान, प्रौद्योगिकी और अंतरिक्ष राज्य मंत्री जितेंद्र सिंह समापन सत्र में शामिल हुए। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो के अध्यक्ष वी नारायणन ने कहा कि दो दिन की बैठक में आपदा प्रबंधन और जलवायु परिवर्तन निगरानी सहित कई विषयों पर चर्चा हुई।
3: We had 26 delegates from
4: इस बैठक में 10 देशों के 26 प्रतिनिधियों के साथ साथ इसरो, इन स्पेस और अंतरिक्ष विभाग के लोग भी शामिल हुए। इसमें ब्रिक्स देशों के सामाजिक आर्थिक विकास के लिए रिमोट सेंसिंग उपग्रह समूहों के इस्तेमाल पर काफी चर्चा हुई, जिसमें आपदा प्रबंधन, जलवायु परिवर्तन और दूसरे पहलू शामिल थे। हमने मलबा मुक्त अंतरिक्ष मिशन प्रबंधन तथा अंतरिक्ष अभियानों के सतत संचालन पर भी विचार विमर्श किया।
0: विदेश राज्य मंत्री कीर्ति वर्धन सिंह ने 14वें पासपोर्ट सेवा दिवस के अवसर पर सभी पासपोर्ट अधिकारियों की उनकी समर्पित सेवा और नागरिकों के प्रति अटूट प्रतिबद्धता के लिए सराहना की। श्री सिंह ने कहा कि पिछले कुछ वर्षों में भारत की पासपोर्ट सेवाओं में उल्लेखनीय परिवर्तन आया है। विदेश मंत्रालय ने बताया है कि वर्ष 2025 में क्षेत्रीय पासपोर्ट कार्यालयों, पासपोर्ट सेवा केंद्रों और विदेशों में भारतीय दूतावासों के माध्यम से भारतीय नागरिकों को लगभग 1.5 करोड़ पासपोर्ट और संबंधित सेवाएं प्रदान की गई हैं। देश भर में पासपोर्ट सेवा केंद्रों और डाकघर पासपोर्ट सेवा केंद्रों की संख्या में लगातार बढ़ोतरी हुई है। वर्तमान में देश में ऐसे 545 केंद्र कार्यरत हैं। पिछले वर्ष 10 नए डाकघर पासपोर्ट सेवा केंद्र खोले गए थे और इस वर्ष भी 10 नए केंद्र खोले

0: जाने की योजना है। विकसित भारत रोजगार और आजीविका गारंटी योजना ग्रामीण के मसौदा समन्वय ढांचे पर आज नई दिल्ली में उच्च स्तरीय अंतर मंत्रालय बैठक का आयोजन किया गया। इसकी अध्यक्षता ग्रामीण विकास विभाग के सचिव रोहित कंसल ने की। ग्रामीण विकास मंत्रालय ने बताया है कि ये बैठक अगले महीने की पहली तारीख से लागू होने वाले विकसित भारत जी राम जी योजना की तैयारियों के अंतर्गत आयोजित की गई। स्वच्छ गंगा राष्ट्रीय मिशन ने राष्ट्रीय नगर कार्य संस्थान के सहयोग से गंगा नदी के तट पर शहरी नदी प्रबंधन योजनाओं का विस्तार किया है। ये प्रबंधन योजनाएं नमामि गंगे कार्यक्रम के अंतर्गत हैं। अब तक 13 शहरों के लिए शहरी नदी प्रबंधन योजनाएं पूरी हो चुकी हैं। इस योजना के प्रथम चरण में 27 शहरों और दूसरे चरण में 33 शहरों के लिए योजनाएं तैयार की जा रही हैं। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन AIR ऐप पर भी उपलब्ध हैं। ये आकाशवाणी है। पश्चिम बंगाल में कोलकाता के तारातला इलाके में निर्माणाधीन गोदाम की छत गिरने की घटना के बाद राहत और बचाव अभियान जारी है। हादसे में अब तक 3 लोगों की मौत की खबर है। एक रिपोर्ट।
1: बचाव काम युद्धकालीन तत्परता से जारी है। अब तक 18 श्रमिकों को मलबे की ढेर से जिंदा निकाला गया है। करीब 15 और घायल लोग वहां फंसे रहने का संभावना है। घायलों की इलाज SSKM अस्पताल में हो रहा है। मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने कहा है उससे भी ज्यादा लोग फंसे हो सकते हैं। सेना NDRF सिविल डिफेंस फायर ब्रिगेड और कोलकाता पुलिस मिलकर बचाव अभियान चला रहे हैं। दुर्घटना के कारण पर उन्होंने कहा कि प्रारंभिक जानकारी के मुताबिक निर्माण के नक्शे में त्रुटि थी, लेकिन जिम्मेदारी किसकी है ये अभी स्पष्ट नहीं है। कल विधानसभा में इसी विषय पर बयान दिया जाएगा। आकाशवाणी समाचार के लिए कलकत्ता से अभिरूप भट्टाचार्य।
0: अरुणाचल प्रदेश के की पन्योर जिले के याजाली स्थित पोसा में मूसलाधार बारिश और अचानक आई बाढ़ से काफी नुकसान हुआ है। ताजा खबरों के अनुसार 4 लोग लापता हैं, 17 लोग घायल हुए हैं, जिनमें 3 की हालत गंभीर है। प्रशासन नुकसान का आकलन कर रहा है। भूस्खलन के कारण प्रभावित क्षेत्र याजाली और होजपोटिन दोनों तरफ से अब भी संपर्क से बाहर हैं। मुख्यमंत्री पेमा खांडू ने कहा है कि वे स्थिति पर लगातार नजर बनाए हुए हैं। केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू ने बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों के लोगों से सतर्क रहने की अपील की है। उन्होंने लोगों से सभी सुरक्षा निर्देशों का पालन करने को कहा है। इस बीच अरुणाचल प्रदेश में तेज वर्षा के बाद असम में निचले इलाकों में बाढ़ की आशंका को देखते हुए राज्य सरकार ने सभी एजेंसियों को हाई अलर्ट पर रखा है। SDRF, NDRF और अन्य आपातकालीन बचाव दलों को तैयार रखा गया है। मौसम विभाग ने कल देश के कई हिस्सों में मूसलाधार वर्षा की संभावना व्यक्त की है। पूर्वोत्तर क्षेत्र, झारखंड, महाराष्ट्र, उड़ीसा, उप हिमालय, पश्चिम बंगाल, तेलंगाना, तटीय कर्नाटक, कोंकण और गोवा में तेज वर्षा हो सकती है। मध्य महाराष्ट्र, मराठवाड़ा और पश्चिमी मध्य प्रदेश में कल तक तेज हवाओं के साथ आंधी तूफान की स्थिति बनी रह सकती है। बिहार में भी अगले 2 दिनों तक ऐसा ही मौसम रहने का अनुमान है। दिल्ली में कल बारिश की संभावना है। भारत ने संयुक्त राष्ट्र में पाकिस्तान द्वारा कश्मीर मुद्दा उठाने पर कड़ी आपत्ति व्यक्त की है। पाकिस्तान पर संयुक्त राष्ट्र मंच का राजनीतिकरण करने का आरोप लगाते हुए भारत ने कहा कि सह अध्यक्ष के रूप में निष्पक्ष रहने के बजाय पाकिस्तान ने पद का दुरुपयोग किया है। संयुक्त राष्ट्र में भारत के स्थायी प्रतिनिधि पी हरीश ने पाकिस्तान के स्थायी प्रतिनिधि आसिम इफ्तिखार अहमद की टिप्पणियों के जवाब में जम्मू कश्मीर पर भारत का रुख दोहराया।
2: मैं पाकिस्तानी पक्ष की टिप्पणियों का उल्लेख करता हूं। ये हैरान कर देने वाला है कि ऐसे मंच पर जहां राजनीतिक मुद्दों पर संतुलित और निष्पक्ष चर्चा की उम्मीद की जाती है ऐसी बातें कही गईं। मैं दोहराना चाहता हूं कि जम्मू कश्मीर पूर्ण रूप से भारत का घरेलू मामला है।
0: भारतीय नौसेना के जहाज उदयगिरी और कवरत्ती दक्षिण पूर्व एशिया क्षेत्र में अपनी परिचालन तैनाती के अंतर्गत वियतनाम के हो चिन मिन शहर से दौरा पूरा करने के बाद रवाना हो गए हैं। इस दौरे पर पूर्वी बेड़े के फ्लैग ऑफिसर रियर एडमिरल आलोक आनंद ने हो चिन मिन शहर की पीपल्स कमेटी और वियतनाम पीपल्स नेवी के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ समुद्री सहयोग, आपसी समन्वय और क्षेत्रीय समुद्री सुरक्षा पर चर्चा की। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के उपलक्ष्य में INS कवरत्ती पर एक संयुक्त योग सत्र भी आयोजित किया गया। और अब आर्थिक जगत की खबरों के साथ हैं अम्बरीश सक्सेना।
3: बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का सेंसेक्स 791 अंक बढ़कर 76,991 अंकों पर बंद हुआ। निफ्टी भी 198 अंक बढ़कर

0: 24,022 अंकों पर जा पहुंचा। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज के व्यापक बाजार में मिड कैप 100 सूचकांक 0.1% और स्मॉल कैप सूचकांक 0.4% तक बढ़ा। अंतर बैंकिंग विदेशी मुद्रा बाजार में रुपया $1 की तुलना में 8 पैसे मजबूत होकर ₹94.66 पर बंद हुआ।
1: फीफा फुटबॉल विश्व कप के ग्रुप बी मुकाबले में देर रात स्विट्जरलैंड का मुकाबला कनाडा से होगा। इसी ग्रुप में कतर और बोस्निया एंड हर्जोगोविना आमने सामने होंगे। दोनों मुकाबले रात 12:30 बजे से खेले जाएंगे। यूएस ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट के महिला डबल्स में त्रिशा जॉली और गायत्री गोपीचंद ने प्री क्वार्टर फाइनल में जगह बना ली है। भारतीय जोड़ी ने स्पेन की पाउला लोपेस और लूसिया रॉड्रिक्स को हराया। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने अमेरिका के व्यापार प्रतिनिधि दूत जेमिसन ग्रीर के साथ व्यापार वार्ता की प्रगति की समीक्षा की। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने दक्षिण कोरिया के विदेश मंत्री चो ह्यून से सोल में मुलाकात की। वैश्विक चुनौतियों के बीच भारत दक्षिण कोरिया संबंधों को मजबूत करने का आह्वान किया। ओमान ने होर्मुज जलडमरू मध्य से एक अस्थायी समुद्री गलियारा खोलने की घोषणा की। पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता में निर्माणाधीन गोदाम गिरने से 5 लोगों की मौत, बचाव अभियान जारी। अरुणाचल प्रदेश में मूसलाधार वर्षा से अचानक बाढ़ आई, असम में चेतावनी जारी की गई। और फीफा फुटबॉल विश्व कप में कनाडा आज रात स्विट्जरलैंड से खेलेगा। इसके साथ ही समाचार संध्या का यंग समाप्त हुआ। नमस्कार।

0: berikan tak? Oh selare, oh selare, oh selare, oh sinelato.
1: Kanduce le, e bella kanduce.
2: Sotere, tol lagi bhitre, gute ochuna dorot. Aaj mote beda boni deche.
1: Nikkan nikkan, aago ah. तोते दिखे मुई गेलो करलिले मी
2: तू ही मते गेलो करबू
3: या गाडू देखले जनता अर पोचाडू देखले जनता
2: तोर मामू ओछ बाकी लागछि
3: घाटी के जल्दी बाबा
1: मामू दुजे
3: या गाडू देखले जनता अर पोचाडू देखले जनता
1: बोल मामू दुजे बोल मामू दुजे आउछे
2: आ इनु बस
1: लो लो बोल मामू आछु एदे एदे बोल मामू आछी गलाबो
3: आगड़ू देखले जनता जुआर दादा
0: जुआर
3: गाना बजना सारी दल नो का
0: कोय बोलितिया फिर मारी नै छु करे बोझा में तर गीत गाउ छु
3: बोझा बोलसी हं हे गीत लागिर त लोग बोझा होई जाउ छन बो जेन कल गाना के सुनबु आगड़े देखले जनता और पछाड़े देखले संता
0: कोने हेनु के जे एकला बसलु
1: मूल मामू तो मौज पीछे ची ची गोंदी जाउ छे
3: भंजा पीबु का टीके
0: हे आदत छाड़ गा तोर नो जीबा
3: दादा सोके पीउछे मेहनतर जीवन दिन जाको छी छी थू थू भितरे मन घाटी होतीसी झुमरा नी लागे गिलासे ढेकली नेले हाय लागसी दादा
0: मोर खानु आउ के हिन मानिया अछो गा गिनाटे धरी करी गीत गाई गाई भीख मांगले जाकिर दिने जीसी मुई केते दूर दूर केते मार मार ई दुनिया जाकर भाटीर मौत पीले भी मोर दुख मते भूले नहीं पारे
3: ए दादा तू ही मौत पीने ले ई गिना खाली होई जीबा तोते आउ किए भीग नहीं दियन हेले मुई मौत नहीं पीले ई शहरे मैला भर्ती होई जीबा
1: ए मम्मू
3: खाना बंजा
1: तू ही मौत पीले तोल संगे मुई कोता नहीं हुए ची गोंदू चे आलू
3: तू ही भी मौत पी तुगा भंजा तोर माँ हेड़े दी वैसा कर तू ता और तू ही नू ताली बजे बजे नाचू तू तू माँ हरे दादा सबे जदर भी इतार बागी हो गई थी ता ना ये दुनिया थी दुख बोलवार के किसी नहीं थी ता हटा बुझवाई बेड़ा
1: तू ही भी मुझे बेला बोलू जो
0: काय जे कोनालू बो ताके इचन भूरता बा टालागी छे
3: काय कहली जबो
0: तुम पढ़ रे तुम पढ़ तुम पढ़ बिगड़े नेलु काय
3: दादा मोर भंजा कहीं बेड़ा है तबो बेड़ा मुई है मुई
0: नहीं काम हाँ एक ओने नहीं काम तू बेड़ा नुहे से का तोर मामू बेड़ा है
1: मुई बेला
3: नुहे से का नहीं काम ये दादा मोर भंजा होए ना सिनाई
0: कोता कुछ
3: देख जिने मुई बोझो छे तू गा आरु भंजा नाचवा
0: नाचरी कौन है नाच
3: ये दादा ये भंजा लुह पूछने तो पहला
0: ठीक कहू छु बो हां नहीं काम है मुई गाऊ छे बोया सिनो तू नितिया
3: हां

0: नहीं हलो ना बेटा।
1: दोनों माली मोरा पीहे बारे सुना थाली
2: बाबू
0: कणा के हो लाला
1: सुना थाली मोरा पीहे बारे
2: इम्मा
0: कहो
2: मुई ओन दी चुचे को
0: हाँ रे पुता केड़े ओन दी सुचु
2: अल चोबे कंजा चीने मुते बेला बोलचन
0: तू जन सबको बाबा बोलसु हेतिर लगी तो ते सब है बड़ा बोलसन
2: मुल चांग मने बाबा बोले ताकल बा मने लिट में ना हुआ अल मुई बा बोले तो बे लिट में है तन बेला बोलतन बेले मुई काग के बाबुल मिगो
0: इमा भादु भली ये थी बानो मुई उल्हे को रियाउ छे कहीं नहीं जिबुरे हैं
2: बोले जाती ए दलपन मूर्ति के देखती तो हाँ मुई ओएंडी चुचे मुई ओएंडी चुचे
3: ओएंडी सुचु तोर माँ जे
2: मुलमा एमा बागू ते दाकू ते गो
3: फिर बा
2: मुई ओएंडी चुचे
0: कहाँ के फिर बा वाला नो जे
3: हाँ हाँ बहुत ओएंडी सुचु
2: अल तोबे कंदा चिन्ह मुते बेला बोलतो
3: मैं कहले
2: बेले तुई बालुए थे
0: हैं संबादी को आ गया जोहर गो
3: जोहर जोहर
0: जानी छो तो इधर सोर नहीं जहाँ के जहाँ पाला कोई नहीं सी खराब नहीं भाबो
3: खराब भाबो तो लेनता से रहती
0: खटली डायन दूच है
3: नहीं नहीं नहीं इतना दिवसी नमाजी
2: बानुए ते गो मुते कबल

0: कौन जानी पारु थिले जहाँ तहाँ के बा बोलता आज के 24 बरस हला जन्म मामू खुजला बागिर बा खुजुचे
1: तू पर बेसी सिखी दे रे मोते बा बोलबा इज्जत नि जे
0: इज्जत जीवा चल कोने चल इज्जत वाला मानकर भीतर बेजितिया है कि बा खुजुचे

0: apa?
1: Mulma bilic me uche.
0: Luka chura bua thi. Tote aw kete din bhurte thi ta bupri. Hele. Mui kenta kori tor ba hemi.
1: Mulma ke paisa dole lele. Ochi lechi. Tu bi dole nabu na. Ochi le ba.
0: Tor fakir ho ekire ache je. Tor kana una hechi ga.
1: Ti chote mulba nai ho.
0: जहाँ के बा बोलतु से तो रहला हाथी बाड़ी न कोढ़े गोला बिचरा के तोर माँ तो ते जियाबार के निजे जी सिखला नाई जी देले लुके जियत मारी नेले तार इज्जत के नीलाम करी नेले काय करता हेटा ही तार जीबार उपे हे गोला बुझलु तू ही काना बुझबू ए कहीं गोला मुझे सुनु जगा बोलू छे तू जे याडे कातिर सिनेमा फोटो देखु छु
1: तू तो बान नहीं हुए बोलू
0: बा घिनु छु बजारे एक ताड़ी ने तू जीप काटी ने तू उल्टा लोक को बा बनु छु के हवा तुर बा
1: तू एबु
0: अरे मोर तो बाने न मुई केते बा बा हो छे
1: तुल मानी न अल बा किंदे गुलिए बा
0: काना कोहसी रे तोते जा जा मुई तोर बापा है नहीं परे
1: नहीं हो तो देखी चु मुलमा ऊंचो ती केंता मुचा मलची ये ऊंचो कई कुली
0: कुली मुसा मरा ऊंचो कई कुरी तू ही तो ते मुझे कई मोरी दे मेरे ठीक ठीक अच्छे है मी तोर बाप है मी
1: ती मुल बाएब पकिला मुल बाएब
0: केड़े उसा फेकरी पोलाला इतार कैसूर खाई न बाके ते बिले मुसा मोरा हले मुई फुलमोती नी के पैसा धरी करी बाहे जिमी खेंता सोग पे आनी देलू रे को नहीं चंद्र सेना हाथे मोहन और बची धरे नेलु केनते ही करी बोजा सी जे रो टैक्सी तो डबाते केते पैसा हो छी जे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ते तीस्टा दस पैसी कहाँ बोल बापुल मोती जहाँ बोलू मुई केनो 17 र बा हे मिजे कोने के भुरतावा लागी सीना ई नाटक हेले मोर भितरे गुटी अजना सोकते तार सुखे सुखे पहुरुचे सते केरे सुंदर फूलमती रे मु दा केता केता भावना माने आउचे सते मुई तानी के जिमी जिमी फुलमती नहीं बोले बेड़ा तो मते आ दोस्त दे नहीं पारे जैसी ईमुर भिन्नीना चेहरा गंधनी कपड़ा लोता भिगमुंगा गिना के फुलमती नहीं की क्या हेले हेले मोंटा केता केता लागी जाऊँचे ऐ इतना तो तार टेंडागर के पूछी गली नो दो लाख सी पिटमी टाट के जाओ है वापोची पिटसी टाट के
2: के
0: मुई
2: के गए तेरा दोनों डक्कवाट पिटू चे फकीरा कहेंगा रारा खुलू छे इबा भीतर शीघ्र खुला छे भूले भूले नहीं लोई कहेंगा फकीरा क्या बोलू थुलू
0: क्या बोलू थिले
2: भाग मागू थुलू क्या
0: नहीं
2: कहाँ से
0: नहीं इटा गोनी पोका
2: दस पैसी माने क्या गोनी
0: चल भीतर के चल
2: काना बोल सुजे
0: हेवी पोरे क क

0: निकान देखो अमल पोकिलो केंता यातिनी होती नबा ये पोकिलो गादी बुली केंता बिल गादी बुली केंता गादी बुली केंता बिल गादी बुली केंता ओतला ले ओतला ले ओतला ले मोते लिट में आउटो
1: देखी पैसा इटा लोक मोते पेटर भोग के बुझाबार के देतिले हले तुई तुई मोर मन भीतरे आकाबुत भोगते आनी दे करी तोर माँ आगरे मोते कुकुर सोजे नेलो
0: बेले तुई मुल बा नहीं हो
1: ते तेस्टा दोस पैसी धरी करी ये मागी क्या तोर बार नहीं रही पारे सड़के थुकले भी लोक टिके भाभी देख सो तोर माँ मोर मुहे तुकी नला मागी क्या है लीजे काना है लारे मुनुस तो है भाग भाग तू ही आओ क्या रह भी तू मोनी के ने अबू
0: मुझे भाग बोलू तू
1: भाग भाग पे बेला
0: तू मुझे बेला बोलू तू लो देखबो
1: तू ही मुझे कार देखबो रे तू ही मुझे कार देखबो भाग भाग मोर आगरो
0: लो लो देखबो मुझे ठेले न लो
2: ए किरा मोर पुरो बिल झाड़ तू देखबो इसने बोले नहीं मिलते उठ उठ बेटा उठ चल घर के चल ये छोड़ लग ना हमर क्या काम चल चल घर के चल
1: ऐच ये फकीर छोट लोग ही गला बड़ घर और भाषण तू यारे फुल मोती किली ने टैग इज्जत नहीं तो भोटा के पोले या भा भात मुठे मुठे दे थिलु बोली करी मोर मुहे चुकी नलु रह आनी तो चतुर भात ने ने तुर भात
3: अगर बस बस ने तो रह रह है बे कहाँ इंद्र राग लगा रुझू है बे जेते बदमाशी तुम्हार मागी क्या मन कर क्या रे ओ ऐठा बात फिकुजी तार घर के
1: मोर मुहे थुकी नला
3: बेड़ा थुकी नला तो है तार क्या छोर रे फूल मोती क्या हला जे
1: मुई तो पैसा धरी कुरी जाई थिली
3: पुतार सौ के मुई देखू छे जा जा तोर घर के जाऊ चुकी दमी बारे जा मुई गला उतारू जदिर फेर बदमाशी कलू

0: कन्ही ए कन्ही ए पुता उठ गा, सकाल ही बसला न, सबुदिन उठसी, आज के हाँ लगा उछरे सुतला तो उठासी। कन्ही ए कन्ही ए बाबू इबा केनता हूँ सुने करछी गा, रत लालटी आनसी। कन्ही ए कन्ही इमा कहीं जैसी मुई मुहरु फेपल बाहरुचि मोर पो काना हला मोर पो के पवन भी जास नहीं करबार, इटा काना मुसा मराउ सो पुड़िया, इटा ती काना कलु रे धन ए कन्ही मोर धन माली का तू गला जितरी मोरा खाई नेलु रे ए कन्ही मोर धन माली
1: नानी सखालु सखालु की कांदे देखछु तो नानी ए नानी नानी का हला जे कांदे छु
0: तोर भंज सब सारी नला रे भाए
1: काण हला
0: मु सब मोर खाई नहीं करी मरी करी पड़ी छे
1: खाना कहो छु तू भंजा मु सब मोर खाई नहीं करी मरी गला रो रो मु फकीर के उठासी
0: नहीं नहीं एता के नहीं डाक जासे आगे मन को डाकी अनबू
1: थय धर नानी पुलिस जान ले ओथो थाली करी ना बा अब एंता बेला थी हे आज्ञा मान कर तो थाने काय गरज को नहीं मरी जीवा फकीर के नहीं जनो
0: तर लागी तो आज मोर को नहीं मरी गला
2: को नहीं मरी गला सोते मरी गला का
1: फकीर लागी को नहीं मरी गला काना कहूचु नानी
2: ओ तेरे भाई मुए मारे नले को नहीं के मारे नले मुए को नहीं के
1: कहाँ कहाँ माने कोई जाऊँ चाहता मैं
0: इकिरा कली आसे दिला कोने हिल बाह भर के नहीं बोली सबूर इसमें मर पुआ ऊपर छड़ी डाला बेड़ा बोला खेदी ने लता रावड़ को नहीं के
1: हाँ नहीं बेड़ा बोलबू को नहीं के कहाँ लगी राव जी थी ताबो सरम ने लगवार कोते बाह हो तुलो भीख मागवार के लाज लागू तुला को नहीं के मारी नहीं लो जल खाने तन माफी खाए वो बोले
2: मुई का जो फूल मोती निके जिमी कह लो को लो क्या मुई को नहीं कोयला मोर बा नहीं है बुबले मुसा मुरा खाई नहीं करी मोरी जी में ताके भुत्ता बाके मैं नाच कर दिले हेला हेला फूल मोती मोर मुए थुकी गला
1: ठीक कला इछन सभे तोर मुए थुकबे मनर पाप भावना के ढब्बार के

0: ଆକାଶବାଣୀ ସମ୍ବଲପୁର ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟ ରାତି 11:00 ହେବାକୁ ଯାଉଛି। ହିନ୍ଦୀରେ ସମ୍ବାଦ ଶୁଣନ୍ତୁ। ରିଲେ କରୁଛୁ ଆକାଶବାଣୀ ଦିଲ୍ଲୀ କେନ୍ଦ୍ରରୁ କିଛି ସମୟ ମଧ୍ୟରେ।
1: समाचार के साथ मैं वैष्णवी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज नई दिल्ली में प्रगति की 52वीं बैठक की अध्यक्षता की। बैठक में लगभग 30,000 करोड़ रुपए की 4 प्रमुख बुनियादी ढांचा परियोजनाओं की समीक्षा की गई। प्रधानमंत्री ने परियोजनाओं को समय पर पूरा करने और लंबित मुद्दों के शीघ्र समाधान पर बल दिया। बैठक में टीबी मुक्त भारत अभियान की भी समीक्षा की गई। श्री मोदी ने टीबी उन्मूलन में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के उपयोग और जागरूकता अभियानों में एनसीसी कैडेटों तथा माय भारत स्वयं सेवकों की भागीदारी बढ़ाने का सुझाव दिया। प्रधानमंत्री ने साइबर अपराध और डिजिटल धोखाधड़ी के बढ़ते मामलों पर चिंता व्यक्त करते हुए सभी एजेंसियों, बैंकों और डिजिटल प्लेटफॉर्मों के बीच बेहतर समन्वय तथा जन जागरूकता बढ़ाने के निर्देश दिए। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने आज अमरीकी व्यापार प्रतिनिधि दूत जैमिसन ग्रीर और उनके प्रतिनिधिमंडल के साथ नई दिल्ली में बैठक की। श्री गोयल ने भारत अमरीकी व्यापार वार्ता की प्रगति की समीक्षा की और दोनों देशों के बीच आर्थिक साझेदारी को और मजबूत करने के अवसरों की खोज की। उन्होंने राजदूत ग्रीर के नेतृत्व और दोनों पक्षों के रचनात्मक और प्रगतिशील तरीके से वार्ता को आगे बढ़ाने के निरंतर प्रयासों की भी सराहना की। भारत और संयुक्त अरब अमीरात ने आज नई दिल्ली में सामरिक रक्षा साझेदारी ढांचे के अंतर्गत रक्षा सहयोग को आगे बढ़ाने के लिए एक बैठक आयोजित की। बैठक की सह अध्यक्षता अंतर्राष्ट्रीय सहयोग के संयुक्त सचिव अमिताभ प्रसाद और संयुक्त अरब अमीरात के ब्रिगेडियर स्टाफ जमाल इब्राहिम मोहम्मद इब्राहिम अलमार जुकी ने की। चर्चा का मुख्य विषय रक्षा उद्योग सहयोग का विस्तार करना, नवाचार को बढ़ावा देना, विशिष्ट तकनीकों का लाभ उठाना और समुद्री सुरक्षा को मजबूत करना था। विदेश मंत्री डॉ. सुब्रमण्यम जयशंकर ने चुनौतीपूर्ण वैश्विक परिदृश्य के बीच भारत दक्षिण कोरिया संबंधों को और मजबूत करने की आवश्यकता पर बल दिया है। सोल में दक्षिण कोरिया के विदेश मंत्री चो ह्यून के साथ बैठक में डॉ. जयशंकर ने कहा कि वर्तमान अंतर्राष्ट्रीय परिदृश्य में विश्वसनीय साझेदारों के बीच सहयोग पहले से कहीं अधिक महत्वपूर्ण हो गया है।
2: It is really our responsibility.
3: इस साझेदारी को आगे बढ़ाना हमारी जिम्मेदारी है। इसमें सरकार के अलग अलग विभाग और देश की अर्थव्यवस्था के विभिन्न पहलू शामिल हैं, जिनके बीच तालमेल बिठाना बहुत आवश्यक है। मैं कहूँगा कि हमें भविष्य को ध्यान में रखते हुए एक आधुनिक साझेदारी की ओर बढ़ना चाहिए।
2: रिलेशनशिप इन अ मोर डिफिकल्ट वर्ल्ड।
1: नागर विमानन मंत्रालय ने कहा है कि 22 जून को दिल्ली से अमृतसर जा रही एयर इंडिया की एक उड़ान को रनवे निरीक्षण के दौरान के कारण अमृतसर हवाई अड्डे पर कुछ समय तक प्रतीक्षा करने के निर्देश दिए गए थे। मंत्रालय के अनुसार इस दौरान विमान रडार के मार्गदर्शन के तहत कुछ समय के लिए पाकिस्तान के हवाई क्षेत्र में प्रवेश कर गया था। ये प्रक्रिया पाकिस्तान के हवाई यातायात नियंत्रण अधिकारियों के समन्वय से की गई। बाद में विमान को दिल्ली वापस भेजा गया, जहां वे सुरक्षित रूप से उतरा। मंत्रालय ने बताया कि घटना की सूचना न देने के मामले में संबंधित एयर ट्रैफिक कंट्रोलर और विमान चालक दल के खिलाफ अंतरिम कार्रवाई की गई है। पश्चिम बंगाल में कोलकाता के तारातला इलाके में निर्माणाधीन गोदाम की छत गिरने की घटना के बाद राहत और बचाव अभियान जारी है। हादसे में अब तक 5 लोगों की मौत की खबर है। घायलों का इलाज सरकारी SSKM मेडिकल कॉलेज और अस्पताल में चल रहा है। इस बीच मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने घटनास्थल का दौरा कर स्थिति का जायजा लिया। उन्होंने बताया कि कोलकाता नगर निगम घटना की रिपोर्ट तैयार कर रही है। उन्होंने कहा कि हादसे की विस्तृत जानकारी कल विधानसभा में दी जाएगी। गुजरात के भुज क्षेत्रीय परिवहन कार्यालय में आज AI आधारित स्वचालित ड्राइविंग टेस्ट ट्रैक का उद्घाटन किया गया। नई व्यवस्था के अंतर्गत ड्राइविंग टेस्ट से पहले वाहन का पंजीकरण, प्रशिक्षण वीडियो देखना, फोटो स्कैनिंग और RFID सेंसर लगाना अनिवार्य किया गया है। अधिकारियों के अनुसार इससे पारदर्शिता बढ़ेगी और पूरी प्रक्रिया अधिक निष्पक्ष बनेगी। ईरान में मौजूद भारतीय दूतावास ने भारतीय नागरिकों के लिए यात्रा परामर्श जारी किया है।

0: दूतावास ने कहा है कि अगली सूचना तक भारतीय नागरिक जब तक आवश्यक ना हो ईरान की यात्रा ना करें। दूतावास ने भारतीय नागरिकों से कहा है कि वे अपने आसपास की स्थिति पर लगातार नजर रखें और स्थानीय प्रशासन द्वारा जारी निर्देशों का पालन करें। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: आकाशवाणी संबलपुर सुनंतु संबलपुर मुख्य संवाद।
2: आकाशवाणी संबलपुर मुख्य खबर संगे मुई अतीश कुमार शतपथी। भारतर सामुद्रिक विकास गाथाती ओडिशार बड़ भूमिका रही कहले मुख्यमंत्री। भुवनेश्वर लोकसेवा भवन ठाने 14 नंबर मल्टी एजेन्सी सामग्रिक सुरक्षा ग्रुप नीतिर बैठक कले उद्घाटन। जातीय राजपथ नु जबरदखल आर बेआईन पार्किंग हटावार लगी कार्यानुष्ठान बढ़ावार दिगे भारतीय जातीय प्राधिकरण नेले निष्पत्ति। संतुलित आर आपोस लाभजनित भारत आमेरिका द्विपाक्षिक वाणिज्य चुक्तिनामा पूरा करबार दिगे दुई देश अंटा भिड़ीछन कहले वाणिज्य और शिल्प मंत्री। दक्षिण कोरियार जातीय सुरक्षा निर्देशक सांगे आलोचना कले वैदेशिक व्यापार मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर। नूआदिल्ली ठाने अनुष्ठित हला भारत और संयुक्त आरब एमिरेट्स भितरे सहयोग अग्रगति उपरे समीक्षा बैठक। केन्द्र सरकार जनकल्याणकारी योजना मानकर सफलता बाबदे तथ्य रखले केन्द्रमंत्री रामदास अठावले। रायसारा मूल हला सहरांचल जनसंपर्क कार्यक्रम। स्वयं सहायक गोष्ठी मानकर 147 कोटी नु अटका टंकार सुद फिराले राज्य सरकार। विद्यालय पढ़ा बैठी थिवार भूल प्रसंग के नेकर तदंत करबार लगी मुख्यमंत्री देले निर्देश। शिक्षानुष्ठान आर कोचिंग सेन्टर मानके अग्नि निरापत्ता ऑडिट लगी ओडिशा राज्य विपर्यय परिचालना कर्तृपक्ष देले निर्देश। देवगढ़ जिल्लानु अनुष्ठित हला निशामुक्त भारत अभियानरु विकसित भारत परिचय बाबदे सचेतनता कर्मशाला। बौद्धठान अनुष्ठित हला जिलास्तरीय वैषयिक कार्यनिर्वाही बैठक। यूएस ओपन सुपर 300 बैडमिंटन टूर्णामेन्टर दुई नंबर पर्याय के गले भारतीय महिला डबल्स जोड़ी। फिफा विश्वकप ग्रुप बी थी रातिर 12:30 बजे कानाडा आर स्विजरलैंड भितर खेल मैच। भुवनेश्वर कलिंग स्टेडियम ठाने 65 नंबर जातीय आंतराज्य वरिष्ठ दौड़ाकुदा प्रतियोगिता हला मूल। एवं 7 दिन तक राज्यर पाखापाखि सबु इलाकानु हे परे सामान्यु मध्यम धरणर वर्षा सूचना देला पाणिपाग विभाग। आजर मुख्य खबर नु शेष हला जुहार।
1: शेष हला संबलपुरी मुख्य संवाद। आकाशवाणी संबलपुर चलित अधिवेशन शेष करबा पूर्वरु सुनंतु आगामीकाली प्रचारित होबाकु थिबा कार्यक्रम संपर्करे सूचना। आगामीकाली सकाळ 6:30 आजिर भावना उपस्थापना प्रफुल्ल कुमार माझी। स्वास्थ्य सूचना सकाळ 7:10 साइनोसाइटिस रोग कौन लक्षण और तार चिकित्सा ए संपर्क में कहे डाक्तर सत्यजित मिश्र। सकाळ 7:35 स्वभाव कवि गंगाधर मेहर कृति आधारित संगीतर विशेष कार्यक्रम गंगाधर संगीत तपस्विनी शुणिपर। संगीत प्रभुदत्त प्रधान रचना प्रयोजना एवं उपस्थापना प्रदीप्त कुमार श्रीचंदन। संबलपुरी गीत सकाळ 7:50 और 8:30 कंठशिल्पी हेले तुलाराम कलेत पुष्पाजलि मुना मनोज कुमार पुड़ा एवं बीथिका चटर्जी। सकाळ 8:45 सुगम संगीत कंठशिल्पी हेले आरती मिश्र विजय कुमार बेहरा एवं छंदाराणी साहू। हिंदी कथाचित्र गीतर साप्ताहिक कार्यक्रम कथाटी गीतटी सकाळ 9:00 दिन 11:05 संबलपुरी गीतर कार्यक्रम ढोल पारे बजा कंठशिल्पी हेले चेतनामयी बेहरा पवित्र मुंडन सेना गोपाल साहू एवं पूर्ण प्रभा पाणिग्राही। दिन 11:30 हिंदी कथाचित्र गीतर कार्यक्रम खोला झरका एवं दिन 12:00 बातायन। दिन 12:30 एनसीईआरटी द्वारा प्रस्तुत प्रायोजित कार्यक्रम संबलपुरी गीत दिन 1:05 कंठशिल्पी हेले सत्यनारायण बेहरा। घर संसार कार्यक्रम दिन 1:20 इथिरे गृहलक्ष्मीरे रहिछि परिवारकु गोटिए सूतारे बांधिपारे नारी ए संपर्कें ज्योत्स्ना राउतरायंक सहित आलोचना। दिन 2:45 हिंदी कथाचित्र गीतर कार्यक्रम सूचना शुणिले आकाशवाणी संबलपुर। वर्तमान समय राति 11:09:10 एठि शेष करुछु आजिर अधिवेशन। आगामीकाली अधिवेशन आरंभ करिबु सकाळ 5:53 सेतबेळ पर्यंत विदाय दिअंतु। जय हिंद।

0: जिम्मेदारी है। इसमें सरकार के अलग अलग विभाग और देश की अर्थव्यवस्था के विभिन्न पहलू शामिल हैं, जिनके बीच तालमेल बिठाना बहुत आवश्यक है। मैं कहूंगा कि हमें भविष्य को ध्यान में रखते हुए एक आधुनिक साझेदारी की ओर बढ़ना चाहिए।
1: रिलेशनशिप इन अ मोर डिफिकल्ट वर्ल्ड।
2: केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष